फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा शुरू होती है।

आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं देवी वंदना से। माँ केवल शक्ति नहीं, साहस, संरक्षण और प्रेरणा का रूप है। जब जीवन कठिन लगे तो उनकी कृपा मन को नई ताकत देती है।

ईश्वर चाहे किसी भी रूप में हो, जब भक्ति सच्ची हो तो हर रूप पूजनीय होता है। भक्ति का असली अर्थ यही है कि जब मन उलझनों से भर जाए तो साईं का नाम लेकर बस उनके चरणों में बैठ जाओ, क्योंकि कई बार शब्द काम नहीं करते, लेकिन साईं की शरण वो सुकून दे देती है जो कहीं नहीं मिलती।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धैर्य, सत्य और करुणा के प्रतीक हैं। उनके भजनों में एक अजीब सी शांति है, एक अपनापन जो सीधे हृदय से जुड़ता है।

और अब बात उस स्वरूप की जिनकी बंसी की धुन से संसार नृत्य करता है। कान्हा प्रेम है, लीला है, सरलता है और ज्ञान भी। कृष्ण नाम लेते ही मन में मुस्कान, कान्हा की झांकी देखते ही आंखों में भक्ति उतर आती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का काव्य पाठ। आज स्वर है कविता कृष्णमूर्ति और आशा भोसले का।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना यह है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस का काव्य पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये छिंदवाड़ा केंद्र है। आइए सुने चिंतन।
1: पर विश्वास करना उचित कहा गया है। विवेकवान व्यक्ति ही विश्वास करते हैं, विवेक शून्य नहीं। वृद्ध या अनुभवी पर विश्वास कर लेने की एक कथा सदियों से मानव मन को दिशा प्रदान कर रही है। कथा है कि एक जंगल में एक विशाल वृक्ष पर कुछ हंस अपने घोंसले बनाकर शांति से निवास करते थे। उनमें एक अति वृद्ध हंस भी था जो समय समय पर शेष हंसों को परामर्श देकर उनका जीवन निरापद करता था। दो युवा हंस भी थे, वे चाहे जब जिस हंस की खिल्ली उड़ाते रहते थे। एक बार वृद्ध हंस ने देखा कि जिस वृक्ष पर वे सब रहते हैं उसकी जड़ों के समीप से लता अंकुरित हो आई है। वृद्ध ने अवसर देखकर सभी को बताया कि यदि ये लता बढ़कर ऊपर तक आएगी तो एक दिन हम सभी की मृत्यु का कारण बनेगी। अतः उचित यही होगा कि आप लोग अपनी चोंच से अंकुर को नष्ट कर दें। वृद्ध के परामर्श पर एक युवा हंस बोल पड़ा, अरे इन दादाजी को तो मौत ही मौत दिखती है, मरने से डरते हैं। वो सुकोमल लता भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है। अनुभवी का परामर्श उन्हें पसंद नहीं आया, बात आगे न बढ़ सकी। वृद्ध समझता था कि बकरों को दर्पण दिखलाने जैसा ही है मूर्खों को उपदेश देना। कुछ वर्षों के बाद लता बढ़कर वृक्ष के उच्च शिखर तक पहुंच गई। तभी वहां से एक बहेलिया निकला। उसने विशाल वृक्ष को देखकर अंदाजा लगा लिया कि इस पर अनेक पक्षी बसेरा करते होंगे। फिर उसकी दृष्टि मजबूत लता पर पड़ी। वो तत्काल जाल कंधे पर डालकर लता के सहारे पेड़ की सर्वोच्च डाल पर चढ़ गया और उसने जाल फैलाया, फिर नीचे आ गया। संध्या बेला में हंस समूह वृक्ष की ओर लौटा, विभिन्न शाखाओं पर बैठ गया। बैठते ही सभी हंस जाल में फंस गए। युवा हंसों ने अधिक हाथ पैर चलाए इसलिए वे अधिक मजबूती से फंस चुके थे। जब बचने की कोई राह न बची तो व्यंग करने वाला हंस गिड़गिड़ाकर वृद्ध से बोला, दादाजी आपका परामर्श न मानने का फल सामने आ चुका है। मैं अपने उन्मादपूर्ण वक्तव्य पर शर्मिंदा हूं, कृपया अब इस संकट से उबरने का मार्ग बतलाइए। वृद्ध हंस ने उसके विलाप पर कोई ताना नहीं कसा, सहज मुद्रा में बोला, ऐ मेरे साथियों आप सब नेत्र बंद कर मरण की मुद्रा में आ जाइए, विलंब न कीजिए। सभी ने वैसा ही किया। सुबह तक बहेलिया आ गया, उसने दर्जन भर से अधिक हंसों को फंसा हुआ पाया तो खुश हो गया, मगर विचार करने लगा कि ये तो सब मर गए हैं। अतः उसने एक एक को जाल से निकाला और टोकनी में रख दिया। वो टोकनी सर पर रखकर नीचे उतर रहा था तभी वृद्ध हंस ने अपने साथियों को संकेत किया, मित्रों नेत्र बंद किए हुए लेटे मत रहो, एक साथ उड़ चलो। परामर्श सुनते ही सारे हंस उड़ गए। एक अनुभवी की सीख से अनेकों की जान बच गई। उसी दिन उन सभी हंसों में विश्वास जागा कि हमें अपने अनुभवी वृद्धों की बात बिना ना नुकर किए शिरोधार्य करनी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि जहां न जावे रवि वहां जावे कवि, और जहां न जावे कवि वहां पहुंचे।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:50 पर सुनिएगा हेलो छिंदवाड़ा। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर पत्रोत्तर कार्यक्रम भवदी में सुनेंगे 7:20 पर। सदाबहार नगमे हम आपको सुनवाएंगे गीत गंगा में 7:35 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा 8:30 पर, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे तक, 2:30 से 5:30 तक।

सुगम संगीत सुनिएगा सुबह 10:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे 10:30 पर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा संविधान की रक्षा हर नागरिक का दायित्व। इसके अलावा सुनिएगा सात सवाल, फिल्म संगीत, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अमृतवाणी।

6:30 से हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच का इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड से सीधा प्रसारण।

किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी का समय होगा शाम 7:20। इसमें आज सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी।

0: ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रमों का विवरण समाप्त हुआ।
1: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
2: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
2: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
1: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
2: हाँ,
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, प्रस्तुत है हेलो छिंदवाड़ा।

जिला जनसंपर्क कार्यालय छिंदवाड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहर्रम पर्व के दौरान कानून और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हरेंद्र नारायण द्वारा जिले में 26 जून 2026 को मुहर्रम पर्व के आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था, लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यह ड्यूटी कार्यक्रम प्रारंभ से कार्यक्रम समाप्ति तक के लिए लगाई गई है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक छिंदवाड़ा सांसद श्री विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में 25 जून 2026 यानी आज गुरुवार को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। छिंदवाड़ा सहकारी समिति में संचालक मंडल के सदस्यों, पदाधिकारियों व अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी छिंदवाड़ा के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री पीसी माहौरे को नियुक्त किया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी और 28 जुलाई 2026 को समाप्त होगी। ज़िले में अभी तक 64.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि ज़िले की औसत वर्षा 1059 मिलीमीटर है। ज़िले में 24 जून 2026 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 30.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है।

जिला जेल की पेयजल समस्या के समाधान की जिम्मेदारी जल निगम को शीघ्र सुनिश्चित होगी। जल आपूर्ति कलेक्टर श्री नारायण के निर्देशों के परिपालन में जेल अधीक्षक श्री प्रतीक जैन, जल निगम के महाप्रबंधक श्री अविनाश दिवाकर और उप महाप्रबंधक श्री बसंत कुमार बेलवंशी ने तकनीकी टीम के साथ निर्माणाधीन जिला जेल का संयुक्त निरीक्षण किया। जलवायु अनुकूल खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिए तामिया में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और साहस की मिसाल वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर एयरपोर्ट का नाम होगा। रानी दुर्गावती के नाम पर नवीन संस्थान का जबलपुर में जल्द होगा लोकार्पण। 100 करोड़ रुपए लागत से मदन महल के पास तैयार हो रहा है संस्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती के 463वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम को जबलपुर में संबोधित किया। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक कर सकेंगे विद्यार्थी। स्पर्श पोर्टल के माध्यम से होगा आवेदन और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण और स्वीकृति अस्वीकृति की प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूर्ण की जाएगी।

0: समोसरों में आप सुन रहे थे देशकांड। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। 7 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, आइए सुने संदेश। वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग।

0: आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Experience grand in every drive with a Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement, they deserve presence. This is your final opportunity to pre-book the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. And not just that, enjoy all at an effective price starting at ₹9.82 lakhs. Step into a world of refining performance and intelligent design. Six airbags as standard, premium comfort, advanced hybrid technology crafted to stand apart. This month, make it yours. Experience grand in every drive with a Grand Vitara. Visit a near Nexa showroom today.
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
7: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
6: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
7: हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
6: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
7: हाँ,
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
9: 8700001-4242।
10: सुनो ना।
8: हाँ?
10: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ,
10: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे?
10: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
10: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
10: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
10: ओ, 8700001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
11: ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर खतरों को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। आज संविधान हत्या दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि साइबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल भोपाल में आयोजित राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को साइबर सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण सूत्र जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के बारे में बताया।
1: साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी हो यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है, सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डराए धमकाए, तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो।
0: ये अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलाया जाएगा। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई स्टार्टअप तथा स्वरोजगार अभ्यर्थियों को चेक प्रदान करेंगे तथा एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। कल 26 जून को

राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर झाबुआ और डिंडौरी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने एनकोड की बैठक में निर्देश दिए कि अब जिले के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में येलो लाइन खींचकर तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि जिले भर में रैलियां निकालकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 15 से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता पखवाड़े के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल कल लोकभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। भुवनेश्वर में 24 से 28 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीणा ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देव मीणा ने आगामी एशियाई खेल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर जिले में 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। बारिश शुरू होते ही जिले में खरीफ की बुआई का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन में 2,52,624 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बोई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से 2,33,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी होगी, जो कुल क्षेत्र का लगभग 92% है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से कल मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूलों में बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं, पृथक एवं कार्यशील शौचालयों, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सैनिटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था, प्रयुक्त नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी मंदिर नवनिर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले में ग्राम पंचायत पालखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा लोक अदालत के फायदों के बारे में बताया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नामी कंपनियों ने कुल 145 छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए चयनित किया। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में नए सत्र के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैतूल की ग्राम पंचायत घाट प्रपरिया में कठपुतली के खेल के जरिए ग्रामीणों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया और गुना में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत बीनागंज में एक विशेष करियर काउंसलिंग सत्र में एयरफोर्स अधिकारियों ने छात्रों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय।

0: गुरुवार का दिन सुबह के 7:20 वक्त आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त पत्रोत्तर के साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय का।
1: आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त अमोल शिंदे
0: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रुखसाना खान
1: करते हैं आपका कार्यक्रम में स्वागत और कहते हैं नमस्कार।
0: श्रोताओं, आपके पत्र, आपके संदेश और आपकी आत्मीय प्रतिक्रियाएं ये हमारे लिए केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास,

0: स्नेह और अपनत्व की अमूल्य धरोहर है।
1: आपके इन्हीं विचारों, सुझावों और शुभकामनाओं को लेकर हम हर सप्ताह उपस्थित होते हैं ताकि आपसे जुड़ा यह खूबसूरत संवाद निरंतर बना रहे।
0: तो आइए आज के कार्यक्रम में जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से हमारे प्रिय श्रोताओं ने हमारे लिए क्या लिखा है, किन कार्यक्रमों को सराहा है और किन विषयों पर अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम
0: इस पहले संदेश के साथ।
1: रुक्साना जी, आज भी बहुत ही अधिक संदेश हमें प्राप्त हुए हैं, तो किस संदेश के साथ आज हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं?
0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस पहले संदेश के साथ। ये हम तक पहुंचा है पिपरिया रोड न्यूटन वार्ड नंबर 1 तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा से। लिख भेजा है हरिराम साहू, काजल साहू, मास्टर यूवी साहू, वेदांश, भवानी साहू और आप ही के साथ हैं सलीम अंसारी जी।
1: जी, आप सभी सुधी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। इस सप्ताह हरिराम साहू और मित्र मंडली क्या कहते हैं हमसे?
0: बीते सप्ताह का भव्य कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है, शीर्षक गीत की भी इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। साथ ही आप लिखते हैं कि इन दिनों भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रतिदिन की गीत गंगा भी ये सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। साथ ही आपने लिखा है कि हेलो छिंदवाड़ा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, बीते सप्ताह की विविधा इन्होंने पसंद की है, शब्द चित्र कार्यक्रम ये पसंद करते हैं और हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है।
1: हरिराम साहू जी, काजल साहू और सभी साथी, आपने काफी अच्छा संदेश हम तक पहुंचाया है, आपके जुड़ा और संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब अगला संदेश किसका शामिल कर रहे हैं?
1: रुक्साना जी, अगला संदेश भी हमारे नियमित श्रोता मित्रों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। जाटा छापर चौकी लाइन से हमें लिखते हैं मोहनलाल देवांगन, रेखा देवांगन, अर्चना, रुक्साना बेगम, विवेक बंदेवार, सूरज, आश्रित आर्या, ममता भन्नारे, हुरीलाल रुतिया, अब्दुल रबजई, दयाशंकर जी, महेश मस्कुल्ले, जगदीश यादव, राजू नाग, जगजीत पटेल, ताहिरा अंसारी, माधुरी कुमरे, रूपेश, नयन, नवीन। और इसी संदेश में रावणवाड़ा आमालाइन से हमारे साथ जुड़े हैं शेख मुनव्वर, सकीना बेगम, शेख समीर, नजमा, गोलू, रीना, इरफान खान, अरसी, इस्ताक अली, रजिया बेगम, अल्फाज अली, सनाया, ईद नबी, रफीक खान, गंगा प्रसाद और सुरेश देवांगन जी।
0: बहुत बड़ा श्रोता समूह है।
1: जी, बहुत ही बड़ा इनका श्रोता समूह है। अपने संदेश में देवांगन जी साथी लिखते हैं, विगत सप्ताह का भव्य कार्यक्रम इन्होंने बहुत पसंद किया है, पिछले गुरुवार की गीत गंगा और शीर्षक गीत की प्रस्तुति भी इन्हें काफी शानदार लगी। 19 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा और अनुरोध की इन्होंने तारीफ लिखी है, 20 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा मेरी पसंद, 21 तारीख का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी की भी इन्होंने तारीफ लिखी है। आगे लिखते हैं 22 तारीख का विविधा काफी अच्छा था और इसी दिन का कार्यक्रम गीत गंगा और आपकी पसंद भी इन्होंने पसंद किए हैं। 23 तारीख का कार्यक्रम आपके मित ये गीत और 24 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा की भी इन्होंने तारीफ लिख भेजी है।
0: मोहनलाल देवांगन जी और इनके साथियों को इस संदेश के लिए, इस अपार स्नेह के लिए हम कहते हैं धन्यवाद। कार्यक्रम में शामिल ये अगला पत्र हम तक पहुंचा है सतीश जी, अरुण, रमेश विश्वकर्मा, अरविंद, रमाबाई, ज्योति, पार्थ रघुवंशी और इनके साथियों का, रघुवंशीपुरा छिंदवाड़ा से।
1: जी, सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है, क्या लिखते हैं?
0: आपने लिखा है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आपके द्वारा जो विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए वो बहुत ही अच्छे रहे। साथ ही आपने लिखा है कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गीत गंगा, फिल्म संगीत, आपके मीत ये गीत, किसान वाणी, हेलो आकाशवाणी, हेलो छिंदवाड़ा और युववाणी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, किसान वाणी कार्यक्रम की भी ये तारीफ लिखते हैं। अपने पत्र के अंतिम में आपने लिखा है कि मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं, बहुत लंबे समय से प्रोग्राम सुनता हूं लेकिन पत्र थोड़े कम लिखे जाते हैं।
1: सतीश जी, रमेश जी और सभी साथी, आपने संदेश लिखा यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे आग्रह है, आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा नियमित सुनते तो है लेकिन प्रयास कीजिएगा हमसे संदेश के माध्यम से हमेशा जुड़ने का।
0: बिल्कुल, बहरहाल इस संदेश के लिए इन्हें कहते हैं धन्यवाद और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला संदेश किसका है अमोल जी?
1: रुक्साना जी, अगला संदेश भी नियमित श्रोता मित्रों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। वार्ड नंबर 14 न्यूटन नंबर 13 न्यूटन चिखली परासिया से हमें लिखते हैं अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र, वंदना, अंकेश, अनुवेश, ऋतिक, अंकुर, सिंकी वाघ जी।
0: क्या लिखते हैं ये सभी?
1: अपने संदेश में वाघ परिवार लिखते हैं, विगत सप्ताह का 18 जून का कार्यक्रम भवदीय ने काफी अच्छा लगा, इसी दिन के कार्यक्रम वतन का राग और शीर्षक संगीत कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किए हैं। 19 तारीख शुक्रवार के कार्यक्रम गीत गंगा, फिल्म संगीत, अनुरोध, 20 तारीख को कुछ बातें कुछ गीत और मेरी पसंद, 21 तारीख के कार्यक्रम बाल सभा, हेलो आकाशवाणी, ये सभी कार्यक्रम इन्होंने भरपूर पसंद किए हैं। आगे लिखते हैं 22 तारीख का कार्यक्रम विविधा काफी अच्छा था, 23 तारीख का कार्यक्रम शब्द चित्र और अंत में लिखते हैं 24 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा और फिल्म संगीत काफी बढ़िया रहे।
0: अनिल वाघ जी को इस संदेश के लिए कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक और संदेश शामिल करते हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है शिवपुरी से, इसे लिख भेजा है प्रमिला यादव, सौरभ यादव, हर्षिता यादव, अंजलि यादव और इनके समस्त साथियों ने। आप लिखते हैं आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम शब्द चित्र बहुत ही अच्छा लगता है, विविधा की भी ये तारीफ लिखते हैं और साथ ही लिखते हैं कि सुबह सुबह जो गीत गंगा में सदाबहार गाने सुनाए जाते हैं वो इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हर्षिता यादव जी, अंजलि यादव जी, आप हमारे नियमित सुधी श्रोता है, आपका संदेश पढ़कर हमें काफी हर्ष हुआ है, आपके संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब अगला संदेश किसका है?
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है श्रीजी साहू परिवार सिंगुड़ी से, इसमें शामिल श्रोता मित्र है

0: किरण रामनाथ साहू, बबली नर्मदा साहू, दीप शिखा दीपक, हितेश अमन, गुलशन आश्विक, अनय और साहू परिवार के अन्य सदस्य।
1: क्या लिखते हैं ये सभी
0: अपने संदेश में? साहू परिवार इस सप्ताह लिखते हैं, विगत सप्ताह का गुरुवार का कार्यक्रम बहुत ही इन्होंने पसंद किया है। इसी दिन के कार्यक्रम शीर्षक गीत की भी तारीफ लिखते हैं। 19 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा, किसानवाणी और युवानी। 20 तारीख के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, मेरी पसंद। 21 तारीख रविवार के कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, बाल सभा। 22 तारीख का कार्यक्रम विविधा। 23 तारीख का कार्यक्रम शब्द चित्र और 24 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा इन्होंने बहुत पसंद किया है।
1: श्री जी साहू परिवार को आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ इस जुड़ाव के लिए कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, ये जुड़ाव बनाए रखिएगा। और अब उठाते हैं एक रंग बिरंगा सा पत्र जो हम तक पहुंचा है अनिल मालूनिया जी का, हमारे नियमित श्रोता है, पुराना नागपुर नाका छिंदवाड़ा से ये हमें पत्र लिखते हैं।
0: जी मालूनिया जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इस सप्ताह मालूनिया जी क्या लिखते हैं?
1: अपने पत्र की शुरुआत में आपने लिखा है, मन हर्षित हो जाता जब आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारण आता। प्राणवायु नहीं दिखती फिर भी जीवन उसी से चलता। बोलने वाले हो कितनी भी दूर, आवाज से है अनोखा रिश्ता।
0: मालूनिया जी आपने काफी सुंदर पंक्तियां लिखी है, आपकी इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आगे आपने लिखा है, ये रिश्ता ही तो है जो हम श्रोताओं को आकाशवाणी के इस केंद्र से बांधे रखता है, जिसे हम एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों से प्रतिदिन रूबरू होते रहते हैं। आगे आपने लिखा है, 18 जून का शीर्षक संगीत कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, प्रस्तुति शानदार रही। 20 जून को प्रसारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जो कि केंद्रित था विश्व संगीत दिवस पर, उसे भी इन्होंने पसंद किया है। और 20 जून को ही प्रसारित कार्यक्रम मेरी पसंद की भी ये तारीफ लिखते हैं।
0: अनिल मलुने जी आपने काफी सुंदर पंक्तियों भरा संदेश हम तक पहुंचाया है। आपके संदेश और आपके आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब अगला पत्र किसका शामिल कर रहे हैं अमोल जी?
0: रुक्साना जी, ये हमें पत्र प्राप्त हुआ है, शायद प्रथम बार इन श्रोताओं ने हमसे लिखा है। ग्राम बीजागुरा गांगीवाड़ा से लिखते हैं, सागर चंद्रवंशी, विनीत चंद्रवंशी, विकास चंद्रवंशी, कुंदन लाल अहिरवार, पुनाराम चंद्रवंशी, शीलन भलावी और देवीलाल पालजी।
1: क्या लिखते हैं ये सभी?
0: अपने संदेश में सागर चंद्रवंशी और इनके साथ ही लिखते हैं, आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं और काफी कर्णप्रिय रहते हैं, ये हमेशा आकाशवाणी छिंदवाड़ा सुनते हैं, ऐसा इनका कहना है।
1: सागर चंद्रवंशी जी, आपका ये पत्र पहला है लेकिन अंतिम नहीं होना चाहिए। पत्रों में निरंतरता बनाए रखिएगा। हम जानते हैं आप कार्यक्रम सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और आप ये कीजिए कि पत्र भी लिखिए, अपनी समीक्षाएं हम तक प्रेषित कीजिए। और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं ये अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है, ग्राम आलीवाड़ा ब्लॉक तामिया जिला छिंदवाड़ा से लिख भेजा है देवी राम इनवाती और दामिनी इनवाती जी ने।
0: इनवाती परिवार का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इस सप्ताह इनवाती जी क्या लिखते हैं?
1: बीते सप्ताह का भविदीय कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है, शीर्षक गीत की भी ये तारीफ लिखते हैं। 18 जून का गीत गंगा भी इन्होंने पसंद किया है और अनुरोध कार्यक्रम भी ये पसंद करते हैं। 20 जून को प्रसारित कार्यक्रम युवाणी की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है और मेरी पसंद कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। 21 जून को प्रसारित कार्यक्रम बाल सभा और हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है, कार्यक्रम विविधा की ये तारीफ लिखते हैं। 23 जून का शब्द चित्र कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है और 24 जून को प्रसारित कार्यक्रम वंदना चिंतन गीत गंगा और फिल्म संगीत की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है।
0: इनवाती जी आपने लगभग सभी कार्यक्रम विगत सप्ताह के सुने हैं और काफी अच्छा संदेश हम तक आपने पहुंचाया है, आपके जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब अगला संदेश किसका है?
0: रुक्साना जी अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है बाबा बत्री चांद से, लिखने वाले श्रोता मित्र है पृथ्वीराज पटेल, चतरलाल सल्लाम, चंद्रभान ढुके, सुरेश बट्टी, मानसिंह बट्टी, गोलू पटेल, श्यामजी उइके और इनके ढेर सारे साथी।
1: क्या लिखते हैं ये सभी?
0: हमारे श्रोता मित्र लिखते हैं, आकाशवाणी छिंदवाड़ा से जो प्रायः कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो काफी उच्च गुणवत्ता के और कर्णप्रिय होते हैं और इसी के साथ सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक होते हैं, ऐसा इनका कहना है।
1: इस पत्र के लिए इन्हें कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक और संदेश के साथ, ये हम तक पहुंचा है कन्हरगांव डैम से लिख भेजा है मिथिलेश पवार, रूमा पवार, दीक्षिता पवार और महिमा पवार जी ने। आप ही के साथ हैं डॉक्टर मीरत लाल यादव, महेश धुर्वे, सुनील पवार, राहुल पवार, दीपक पवार, हेमंत पवार और मनोज बंदेवार जी।
0: जी आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। इस सप्ताह क्या लिखते हैं मिथिलेश पवार और साथी?
1: बीते सप्ताह का भविदीय कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है, 18 तारीख का युवाणी कार्यक्रम ये पसंद करते हैं। साथ ही लिखते हैं कि इसी दिन का फिल्म संगीत भी इन्होंने पसंद किया है। 20 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम किसानवाणी की ये तारीफ लिखते हैं। 21 तारीख का प्रसारित कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी इन्होंने पसंद किया है। 22 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम किसानवाणी की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। 23 तारीख का गीत गंगा इन्होंने पसंद किया है और 24 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम वंदना और चिंतन की ये तारीफ लिखते हैं।
0: मिथिलेश पवार जी, रूमा पवार, दीक्षिता पवार और सभी साथी, आपने भी विगत सप्ताह के लगभग सभी दिन के कार्यक्रम सुने हैं और उन्हें पसंद किया है, आपके संदेश और जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब अगले संदेश के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, किसका है ये संदेश?
0: जी अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया, सूरज नारायण डेहरिया, अभिषेक, निखिल, पूजा, स्वाति, रुचि, पल्लवी,

0: डेहरिया जी, ये लिखते हैं गीतांजलि कॉलोनी छिंदवाड़ा से।
1: क्या लिखा है इन्होंने इस सप्ताह?
0: डेहरिया जी लिखते हैं, विगत सप्ताह का भव्य कार्यक्रम इन्होंने बहुत पसंद किया है और साथ ही इसी दिन वतन का राग कार्यक्रम भी इन्हें अच्छा लगा। 19 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा और माटी के स्वर, 20 तारीख का कार्यक्रम जो कि केंद्रित था संगीत और योग से संबंधित, वो इन्हें काफी अच्छा लगा। 21 तारीख को बाल सभा और हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम इन्होंने पसंद किए हैं। 22 तारीख का कार्यक्रम विविधा इन्हें काफी अच्छा लगा। इन्होंने कुछ सुझाव भेजे हैं। इनका सुझाव है कि रोजगार और नौकरी बिन युवा पीढ़ी पर मानसिक तनाव और चुनौती बहुत बढ़ रही है, तो इस विषय पर सक्षम अधिकारी से चर्चा सुनवाए, ऐसा इन्होंने आग्रह किया है।
1: क्या कहना चाहेंगे अमोल जी इस बारे में?
0: इनका सुझाव तो काफी अच्छा है, ये समय की मांग भी है, तो हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे कि ऐसी चर्चा आयोजित कर हमारे श्रोताओं को सुनवाने का।
1: बहरहाल इस संदेश के लिए लक्ष्मण प्रसाद डहरिया जी को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं एक और संदेश के साथ, ये हम तक पहुंचा है। सुरेश कस्तूरे, राजेश कुमार कस्तूरे, शांतनु कस्तूरे, विक्रम कस्तूरे, राम कस्तूरे, श्याम कस्तूरे, अतुल कस्तूरे, पार्थ कस्तूरे, राघव जोशी, अनुराधा कस्तूरे, रेणुका कस्तूरे, स्वाति कस्तूरे, नीता कस्तूरे, श्रुति कस्तूरे, नमो कस्तूरे और इनके साथियों का आप सभी ने हमें संदेश प्रेषित किया है। वार्ड नंबर 11 शिव मंदिर के पास उमरेड से।
0: जी, कस्तूरे परिवार के समस्त सदस्यों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। इस सप्ताह कस्तूरी जी क्या लिखते हैं?
1: बीते सप्ताह का भव्य कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का वतन का राग कार्यक्रम और सुगम संगीत भी ये पसंद करते हैं। 19 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम वंदना की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। इसी दिन का हेलो छिंदवाड़ा कार्यक्रम भी इन्हें अच्छा लगा है। इसी दिन संध्याकालीन प्रसारण में युववाणी में चर्चा और जो गाने सुनवाए गए वो बहुत ही अच्छे लगे। किसान वाणी कार्यक्रम की भी इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। 20 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम रामचरितमानस गान और चिंतन की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। इसी दिन का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। 21 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम गीत गंगा की ये तारीफ लिखते हैं। साथ ही आपने लिखा है कि 22 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम विविधा में जो भेंटवार्ता सुनवाई गई बहुत ही लाभदायक थी। इसी दिन का माटी के स्वर कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। 23 तारीख का शब्द चित्र कार्यक्रम ये पसंद करते हैं। साथ ही आपने लिखा है 24 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम गीत गंगा में गाने बहुत सुहाने थे और इसी दिन का फिल्म संगीत और सबरस कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है।
0: कस्तूरी जी, आपने काफी विस्तारित समीक्षा और भरा संदेश हम तक पहुंचाया है। आपने लगभग सभी कार्यक्रम जो विगत सप्ताह आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित हुए थे सुने और काफी अच्छी समीक्षाएं हम तक पहुंचाई है। आपके संदेश और जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब अगला संदेश किसका है?
0: रुक्साना जी, अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है ताजनगर छिंदवाड़ा से। लिखने वाले हमारे श्रोता मित्र है गफ्फर बाबू, रुक्साना बेगम, आयरा इनाया, राहुल पाल, फूल सिंह मक्कड़, हरेश विश्वकर्मा। इसी संदेश में नॉर्थ चंदामेटा से शामिल है मोहम्मद अशफाक जी, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रज्जाक और हुमा शायमा जी।
1: स्वागत है इन सभी श्रोताओं का भव्य कार्यक्रम में। क्या लिखते हैं ये?
0: गफ्फर बाबू साथी लिखते हैं, विगत सप्ताह का भव्य कार्यक्रम अच्छा लगा। 19 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा युवानी किसानवानी की ये तारीफ लिखते हैं। 20 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा कुछ बातें कुछ गीत युवानी और मेरी पसंद कार्यक्रम ये भी इन्हें शानदार लगे। 21 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा, हेलो आकाशवाणी, बाल सभा, किसान वाणी की तारीफ लिखते हैं ये। 22 तारीख का विविधा कार्यक्रम काफी अच्छा था जो कि योग दिवस पर आधारित था, ऐसा ये लिखते हैं। 23 तारीख का कार्यक्रम आपके मित्र ये गीत, ये कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। और अंत में लिखते हैं 24 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा और फिल्म संगीत बहुत ही बढ़िया रहा।
1: तो इस संदेश के लिए गफ्फार बाबू और साथियों को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें संदेश भी प्रेषित करते रहिए। और अब अगला संदेश हम तक पहुँचा है मुकाम बमनी लाला पोस्ट परसोली से। संदेश भेजने वाले श्रोता हैं सतीश रघुवंशी, शिवम रघुवंशी, राज रघुवंशी, अजय वर्मा, शिवराम चौरे, सखाराम साहू और इनके साथी।
0: सतीश रघुवंशी और सभी साथियों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सतीश रघुवंशी जी बहुत पुराने हमारे श्रोता है, इस सप्ताह क्या लिखते हैं?
1: बीते सप्ताह का भव्य कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। अनुरोध और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की भी ये तारीफ लिखते हैं। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम भी इन्हें अच्छा लगा है। आपकी पसंद कार्यक्रम माटी के स्वर, मेरी पसंद कार्यक्रम और गीत गंगा की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है।
0: सतीश रघुवंशी जी, शिवम रघुवंशी, राज जी, आप सभी हमारे नियमित और प्रभु श्रोता है। आपके संदेश और आपके आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब अमोल जी, इस कार्यक्रम में शामिल अंतिम संदेश किसका है?
0: जी, ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है न्यूटन चिकली नंबर 11 से। लिखने वाले हमारे श्रोता मित्र है पप्पू गुप्ता, श्रीमती उमा गुप्ता और देवेश गुप्ता जी। अपने संदेश में गुप्ता परिवार लिखते हैं, विगत सप्ताह आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित कार्यक्रम जैसे शीर्षक गीत, शक्ति रूपा, बाल सभा सभी बहुत बढ़िया रहे। विशेष रूप से विविधा के अंतर्गत जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो चर्चा सुनवाई थी ये इन्हें काफी ज्ञानवर्धक लगी। इसी के साथ विगत सप्ताह युवानी के अंतर्गत जो करियर कामयाबी का क्रम था वो इन्हें काफी ज्ञानवर्धक लगा। सप्ताह भर प्रसारित वंदना, चिंतन और फिल्म संगीत की भी इन्होंने तारीफ लिखी है।
1: तो गुप्ता परिवार को इस संदेश के लिए कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते आज के इस प्रोग्राम में शामिल

0: ये अंतिम पत्र।
1: जी
0: उगते सूरज के साथ ये हम तक पत्र पहुंचा है। आप समझ गए होंगे कि रंग बिरंगा प्यारा सा पत्र किसका
1: जी
0: है।
1: जी राजू निखाड़ी जी का तो पत्र हमें नहीं मिला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे नियमित श्रोता हैं गुलाबरा छिंदवाड़ा से, भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े और सुरेश निखाड़े जी।
1: जी राजू निखाड़े और परिवार का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
0: उगते सूरज के साथ तमाम सुनने वालों को ये सुप्रभात कहते हैं। साथ ही इन्होंने एक सुविचार लिख भेजा है। आप लिखते हैं कि असाधारण अवसरों का इंतजार ना करें, सामान्य अवसरों को पकड़ें और उन्हें महान बनाएं।
1: काफी अच्छा सुविचार इन्होंने हमारे साथ साथ हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनाया है।
0: बीते सप्ताह के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए ये लिखते हैं कि बीते सप्ताह का भवदीय कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। अधिक से अधिक पत्रों की प्रस्तुति के साथ प्रस्तुतिकरण में जो तालमेल था वो बहुत ही अच्छा लगा। आगे आप लिखते हैं, शीर्षक संगीत जो कि चांद पर केंद्रित था, इसकी प्रस्तुति और इसमें शामिल गीत बहुत ही अच्छे रहे। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत की ये तारीफ लिखते हुए कहते हैं कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। आगे आपने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोमवार को विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत जो बातचीत की गई वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। और अंत में आपने लिखा है कि वंदना के अंतर्गत पूरे सप्ताह भर सवेरे सवेरे सुमधुर भजनों की प्रस्तुति ने मन को मोह लिया।
1: राजू निकाड़ी जी आपने काफी सुंदर पत्र हम तक पहुंचा है, आपके संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब अमोल जी, घड़ी का इशारा है कि आज के भवदीय में बस इतना ही। श्रोताओं, आपके पत्र और आपके संदेश हमें नई ऊर्जा देते हैं और बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा भी। हम आपके इस स्नेह विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं।
1: श्रोताओं, आप अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रिया इसी तरह भेजते रहिए इस पते पर।
0: पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम भवदीय, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, कुकड़ा हिल्स, छिंदवाड़ा। पिन कोड है 480001।
1: और संदेश के लिए हमारा फोन नंबर है 8602-262-263।
0: यानी 8602-262-263। श्रोताओं, फिर से होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप कीजिए अगले गुरुवार का इंतजार। हम करते हैं आपके पत्रों और संदेशों का इंतजार। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं
1: नमस्कार।

अभी श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुन रहे थे। पत्रोत्तर के कार्यक्रम भवदी में प्रस्तुति सहयोग था रुखसाना खान का, प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। पेश है सदाबहार नगमों का कार्यक्रम गीत गंगा।

0: घर के सामने।
1: यह है कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में तेरे घर के सामने फिल्म से, हसरत जयपुरी के बोल एस टी बर्मन की तरफ।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी

0: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
2: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
3: अगला गीत लीजिए सुनिए आरजू फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये है लता मंगेशकर फिल्म सेहरा में, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत रामलाल का।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों बहनों, दिनांक 25 जून 2026 गुरुवार यानी आज आकाशवाणी छिंदवाड़ा से शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ मौसम में बुवाई एवं फसल प्रबंधन पर, और विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिखा शर्मा, सहायक प्राध्यापक पौध व्याधि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा। किसान भाई बहन, हमारे फ़ोन नंबर 8989116346 पर कॉल कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8989116346। किसान भाई हमें अपने सवाल कार्यक्रम पूर्व व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602262263। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8602262263। तो किसान भाइयों बहनों, सुनना न भूलें सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी, प्रसारण 25 जून 2026 गुरुवार यानी आज आकाशवाणी छिंदवाड़ा से शाम 7:20 पर। सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म है पिया का घर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली

0: में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास

0: लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान कोलिपुलुई दर्जे तक पहुंचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
1: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभी डांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को

0: गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते

0: देश पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
3: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers. measures in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Sakle.

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक।

0: शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
0: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून सन 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक

रूप देने का विचार था, और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरीचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया। और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की, ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगई गोमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो

थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: यह आकाशवाणी का भोपाल है।

0: शाहिद माल्या की आवाज़ में आप सुन रहे थे उड़ता पंजाब फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा शिव कुमार बटालवी ने, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना हॉलीडे फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल हिमेश रेशमिया की तर्ज और आवाजें अमन त्रिखा, विनीत सिंह और साथियों की।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

विशाल शेखर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे। बैंग बैंग फिल्म के इस गीत में हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजें, अन्विता दत्त के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हृदय गट्टानी की आवाज में ये गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। फिल्म बैंजो से सुनिए ये गीत।

बैंजो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, हृदय गट्टानी की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और दिन भर जहां भी रहें, रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: बैठे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूज़िक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें ज़रूर लगा। और इसकी वजह भी हैं, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है, ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूज़िक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूज़िक रूम घर के सामने था, मैंने फ़ोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूज़िक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूँगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूज़िक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला, अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: केंद्र है। अब आप सुनेंगे सीधी जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सीधी जिला इन दिनों विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए गए विशेष जनकल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सीधी, मझौली, कुसमी और रामपुर नैकिन विकास खंडों में व्यापक स्तर पर जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य उन परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न कारणों से वंचित रहे। सीधी विकास खंड में आयोजित जनकल्याण शिविर में 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं मझौली में 3 दिवसीय शिविर में 14,755 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में कृषक चौपालों का आयोजन किया गया। रामपुर नैकिन और कुसमी में आयोजित चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद जिले के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक, पुष्प और पाठ्य सामग्री देकर किया गया। विशेष भोज, बाल सभाएं और प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित की गईं। वहीं जिले में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए 6 दिवसीय शिक्षक प्रेरणा व गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सीधी जिले में समान नागरिक संहिता UCC पर व्यापक जन सुझाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़रिया में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। कुसमी विकास खंड की ग्राम पंचायत पौड़ी के घटिया टोला स्थित बैगा बस्ती में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था। नए नलकूप खनन से लगभग 70 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। मानस भवन सीधी में आयोजित लोक कल्याण मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया। मेले में पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन प्रक्रिया, UPI भुगतान, QR कोड उपयोग तथा डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मझौली क्षेत्र में 5 स्वसहायता समूहों को

25 लाख रुपए का बैंक ऋण प्रदान किया गया है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों सीधी रेलवे स्टेशन से कुचवाही तक निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने रेलवे ट्रैक के आसपास जल निकासी की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं कमजोर स्थलों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले में योग को जनभागीदारी का उत्सव बनाते हुए 51 स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और विधायक रीति पाठक की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर बल दिया। धार्मिक, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों सहित पूरे जिले में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। बर्चर आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के अवसर पर बीते दिनों कैलाश तरुण वृद्धाश्रम पनवार में जिला प्रशासन द्वारा तातश्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उनके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त की गई। सीधी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी थी प्रस्तुत फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सागर।
1: हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है सुगम संगीत।

इसी के साथ सुगम संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरि की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार

0: में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात? सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम

0: गिरिजा शंकर बधे का था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल

0: आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
0: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
0: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
0: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी, नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम

0: समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ बताइए।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
0: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का,

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंडित कुमार गंधर्व की गाए इस भक्ति पद के साथ।

कुमार गंधर्व की आवाज में अभी आपने ये भक्तिपद सुना, और आइए अब सुनते हैं आनंद मिलिंद का संगीत, गुलजार साहब की शायरी, गायिका हैं आशा भोंसले, और ये एल्बम है दायरा।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये आवाजें हैं जानी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की।

मैंने शिकवे ना किए रह गया होंठों को सिए, खूने अरमान हुआ उफना किया।

रोशनी का था ये सामा तेरी दुनिया के लिए, अपनी पलकों पे जला रखे थे गाजी ने दिए।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में रजत अरोड़ा का लिखा गीत। गायिका हैं सुनिधि चौहान और फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर।

कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और आवाज है शफकत अमानत अली की। ये एक गैर फिल्मी गीत है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

कार्यक्रम में आप सुनिए मसरूर अनवर का लिखा ये शेर। इसे आवाज दी है रूना लैला ने।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में हम आपको एक गैर फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं यतीन्द्र मिश्रा और संगीत दिया है प्रीतम ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। ये आवाज है भूपेंद्र सिंह की। विमल कश्यप के बोल हैं और निखिल कामत का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको एक भक्ति पद सुनवा रहे हैं।

रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की और हम आपको संत मीराबाई का ये भजन सुनवा रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमज़ोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: इस भक्तिपद के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: रंग तरंग। नमस्कार।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज महान संगीतकार मदन मोहन का जन्मदिन है, हम उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आज मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे मदन मोहन को और साथ ही करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत सुनेंगे। यह आवाज लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम मौसम, गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन लाया,
2: कौन लाया। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम हीर रांझा।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है चिराग।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आवाजें मदन मोहन और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था वो कौन थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब सुनिए राजा मेहदी अली खान की

रचना आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है मेरा साया। संगीतकार हैं मदन मोहन और अभी तक हम आपको सुनवा रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म मेरा साया का गीत सुना। गीतकार राजा मेहदी अली खान थे और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत। तो लीजिए पहले हम आपको नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गीत सुनवा रहे हैं। उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजें। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, उदित नारायण की आवाज और ये फिल्म है अनाड़ी।

इस कार्यक्रम का अब आखिरी गीत सुनिए। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, फिल्म का नाम कूली नंबर 1।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर तैयार है ना मेरे साथ सुरीला सफर में निकलने के लिए? मुझे पता है आप तैयार हैं। देखिए ना, बहुत ही एक सुंदर विचार है कि जीवन जो है एक संगीत वाद्य यंत्र के समान है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। जिस तरह एक वीणा या गिटार से निकलने वाली धुनें यंत्र की बनावट से ज्यादा उसे बजाने वाले वादक पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन की लय और सफलता हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों पर निर्भर करती है ना? तो फिर आप देखिए ना कि आप अपने जीवन के स्वयं रचयिता हैं। हर परिस्थिति, हर सुख और दुख में ये आप तय करते हैं कि कौन सा सुर हमें बजाना है, यानी कौन सा काम हमें करना है। तो संगीत की तरह हमारे जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव और भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारे वाद्य यंत्र। तो जैसे एक वाद्य यंत्र के सुर में रखने के लिए, उसको सुर में रखने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सीखने और धैर्य की जरूरत होती है ना? और यदि इन तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाता है तो क्या होता है, वे टूट जाते हैं, और अगर ढीला छोड़ दिया जाता है तो उनसे सुर नहीं निकलता। तो जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। बस यही बात हमारी गीत संगीत में भी लागू होती है। जी हाँ, हमारे संगीतकार जब किसी गीत की रचना करते हैं तो हर वाद्य यंत्र को कस के रखते हैं, और जब कोई निर्देशक उन्हें पर्दे पर फिल्माता है तो वहां पर भी उन वाद्य यंत्रों के साथ उन गीतों को गाया जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। समझ गए ना आप मेरी बात? तो आज की हमारी जो टेक्स्ट है, आज का हमारा जो टेक्स्ट है वो ये है कि अक्सर जब कोई किरदार अकेला होता है, उदास होता है या प्यार में होता है, तो पर्दे पर उसे किसी वाद्य यंत्र के साथ नायक या नायिका अपने जज्बात पेश करते हुए दिखाए जाते हैं। तब वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि स्क्रीन पर रोमांस, उदासी या दिल की गहराइयों को दिखाने का एक जरिया होता है। फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से लेकर आज तक एक खास वाद्य यंत्र पर कई जादुई गीत रचे गए हैं, फिल्माए गए हैं, और कई बार गानों की शुरुआत उसी वाद्य यंत्र की धीमी और मीठी मीठी धुन से हुई है। बाद में हाँ, अंतरा आते आते और सारे वाद्य यंत्र भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो आज हमारे दोस्तों को बताना है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिनसे जुड़े खूबसूरत गीत आज मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं। इससे पहले हम उन श्रोताओं को बता दें जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, विविध भारती परिवार से जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं और आपको अंदाज लगेगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र आज हम लेकर आए हैं। हमारे कई श्रोताओं ने तो सही लिखा है और कई श्रोताओं ने बहुत सारे वाद्य यंत्रों की बात कही है। तो आइए सुनते हैं ये पहला गीत, खय्याम साहब की धुन, साहिर लुधियानवी के बोल, जगजीत कौर की आवाज और फिल्म का नाम शगुन। याद करिए पर्दे पर नायिका कहाँ बैठी है, किस वाद्य यंत्र के साथ उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

जी, तो अभी आपने जगजीत कौर की आवाज में फिल्म शगुन का ये गीत सुना। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था खय्याम साहब ने। और हमारे श्रोताओं ने बता दिया है कि आज हम वाद्य यंत्र पियानो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए ये जो वाद्य यंत्र बज रहा है ये भी पियानो ही है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है और वो लिखते हैं कि भाई आज पियानो से जुड़े कुछ फिल्मी गीत आप लेकर आई हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का जिक्र कर दिया है, जैसे कि गिटार, हारमोनियम, ढोलक, वायलिन, शंख, मृदंग, तबला, सैक्सोफोन, सितार और बांसुरी का। नहीं नहीं, आज हम बात करेंगे किस पर? पियानो पर। जो पियानो से जुड़े गीत हैं जहां पर नायक या नायिका की उंगली थिरक रही है पियानो पर। एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात जिस घड़ी निशब्द झरते हैं धरती की गोद में, तब दबे पांव सितार की झनकार तारों की ओढ़नी ओढ़कर सोए कंदील को जगा देती है। दुख सुख का कोई भी पल हो, वाद्य कोई भी हो, कुछ गीतों ने जीवन में बड़ा डांडस बधाया है। वाद्य कोई भी हो, ये हमारी संवेदना की दुनिया के सच्चे साथी हैं। ये गीत जो आज बजेंगे वे हमारी सांसों में तिरते हैं, कानों में उतर कर मन के अंतर्मन को विकल कर देते हैं। आज के सुरीले सफर में जीवन रस में डूबे गीत सुनने को मिलने वाले हैं। कल्पना को परवास देते इन गीतों की अनुगूंज पहरों पहर मदहोश किए रहती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। देखिएगा आपके जो गीत आपने लिखे हैं क्या वो गीत हमारी पसंद से मेल खाते हैं। आपने लिखा है कि आज मीठी धुनों से सुरीले संगीत से सजा है सुरीला सफर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के अनुसार आज के गानों में विभिन्न वाद्य यंत्रों की झनकार सुनने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर विषय है। जी हाँ, वैसे तो हर गाने में बहुत सारे वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हमने जहाँ खास तौर से पियानो बजाया गया है उन गानों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि और वो वाद्य यंत्र और कोई नहीं पियानो ही है। आज हम पियानो पर बजने वाले गाने सुनेंगे, जैसे कि इन्होंने गाने का जिक्र भी किया है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि नायक और नायिका को जब दुख और उदासी घेर लेती है तो दिल की व्यथा को उजागर करने के लिए वो गाने का सहारा लेते हैं और पियानो बजाकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो सिर्फ लकड़ी, तार और चाबियों का ढांचा नहीं है, वो इंसानी जज्बातों को सुरों में ढालने का एक जरिया है। जब इसकी सफ़ेद और काली

चाबियां पर उंगलियां थिरकती हैं तो मानो वक्त थम जाता है। पियानो की धुन में शब्दों की जरूरत नहीं होती। इसकी धीमी आवाज जहां आंखों में आंसू ला सकती है, वहीं इसकी तेज और ऊर्जावान धुन थिरकने पर हमें मजबूर कर देती है। बहुत सुंदर क्लासिक विचार ठीक हमारे आज के गीतों की तरह आपके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आगे बढ़ते हैं और वैसा ही एक और गीत सुनते हैं, जहां कौन है देखिएगा, शायद दिलीप कुमार साहब की उंगलियां थिरक रही हैं। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम अंदाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद साहब की धुन।

जी हाँ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभिनव अन्वेषण की पर्याय बन चुकी जोशी साहिबा का ये इबारत पूर्ण रूपेण कार्यक्रम अनुरूप है, जो सफर को सुरीला और नशीला बनाएगा। साज बिन आवाज अधूरी, यंत्र बिना मंत्र अधूरा, आवाज को अंजाम हासिल करने में इन यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आदिकाल से पूजा आदि शुभ कार्यों और समारोह में इनका सम्मान होता आ रहा है। चाहे शंख हो, घंटी की ध्वनि हो, ढोलक हो, मृदंग हो, तबला हो, उसकी थाप हो, वाद्य यंत्र हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज के प्रसंग में पियानो और वायलिन का जिक्र है तो मन के शून्यता को पूर्णता प्रदान करने में सफल मानी जाती है। साज और आवाज से सज्जित सफर का बेसब्री से इंतजार है। तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में जिस वाद्य यंत्र की बात हो रही है वो है पियानो। हिंदी फिल्मों में दिखाए गए ये वाद्य यंत्र अक्सर अमीर घरानों के घर की शोभा होती

थी। प्यार में धोखा या बेवफाई के कारण हीरो और हीरोइन अपना दर्द इसी पियानो के साथ बांटते नजर आते थे। आपने गीत का जिक्र भी किया है, देखिएगा ये गीत हमारी प्लेलिस्ट में है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज क्या टेक्स्ट पढ़कर लग रहा है, वो साहस कोई और नहीं पियानो हो सकता है। ये हमारा मानना है जो खुशी और गम दोनों मौके पर हीरो या हीरोइन द्वारा अपनी खुशी या गम व्यक्त करने के लिए इस साज के साथ गाते देखा गया है। जैसे कि फिल्म अनाड़ी का इन्होंने गाना लिखा है, अनुपमा का, और भी बहुत सारे गाने इन्होंने आज लिख दिए हैं। हो सकता है आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएं। बताइएगा कितने गाने आपके गानों से हमारी पसंद मिली है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में आपने बहुत सुंदर विषय चुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इबारत केवल एक वाद्य यंत्र की चर्चा नहीं करती, बल्कि हिंदी सिनेमा की उस भावनात्मक विरासत को याद दिलाती है, जहां सुर, संगीत और संवेदनाएं एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। जब पर्दे पर कोई नायक या नायिका अपने मन की अनकही बातों को शब्दों से नहीं, बल्कि किसी वाद्य यंत्र की मर्दों धुनों के सहारे व्यक्त करता है, तब वो संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। उसकी मीठी तान कभी प्रेम की कोमलता बन जाती है, कभी विरह की कसक और कभी अकेलेपन की मौन व्यथा। बहुत सुंदर।

0: उस भावनात्मक विरासत को याद दिलाती है जहाँ सुर संगीत और संवेदनाएं एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। जब पर्दे पर कोई नायक या नायिका अपने मन की अनकही बातों को शब्दों से नहीं बल्कि किसी वाद्य यंत्र की मर्दो धुनों के सहारे व्यक्त करता है, तब वो संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। उसकी मीठी तान कभी प्रेम की कोमलता बन जाती है, कभी विरह की कसक और कभी अकेलेपन की मौन व्यथा। बहुत सुंदर जी। तो अगला गीत हम आपको सुनवाएं, इससे पहले हमारे दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे। पहला सवाल तो यही कि पियानो से जुड़े गीत बताइए जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप कौन कौन से गीतों का जिक्र करने वाले हैं बताइए, कौन कौन से ऐसे गाने हैं जहां नायक या नायिका इस वाद्य यंत्र को बजा रही हैं और गीत गाए जा रहे हैं। हो सकता है आप जो गीत लिखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से, हमारी पसंद के गीतों से मेल खा जाए। और हमारा दूसरा सवाल, क्या आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है? अगर हाँ तो कौन सा? जैसे हमारे एक श्रोता ने कहा है कि उन्होंने वायलिन सीखा है और उनके बेटे को भी उन्होंने वायलिन सिखाया है, तो आप भी बताइए अगर आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है तो कितना सीखा, कितने साल सीखा और अब आप उसे बजाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात। अगला गीत सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम तीन देवियां। बताइएगा इसमें देवानंद तो वाद्य यंत्र के साथ हैं यानी पियानो बजा रहे हैं, सामने खड़ी हैं सिमी ग्रेवाल और ठीक पीछे कौन सी नायिका खड़ी उनका इंतजार कर रही है यानी उस गाने को सुन रही है।
1: हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि देवानंद के साथ सिमी ग्रेवाल हैं और कल्पना मोहन हैं। बिल्कुल इस फिल्म में नंदा भी है, लेकिन इस गाने में नंदा जी नहीं खड़ी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि साज के साथ गीत और भावनाओं का संगम लेकर आया है आज का सुरीला सफर। साज वो दर्पण है जिसमें शब्द अपनी भावनाओं को निहारते हैं। साज वो आधार है जिस पर गीत अपनी उड़ान भरते हैं। जहाँ केवल शब्द अधूरे रह जाते हैं, वहाँ ये उस भाव को पूरा कर देते हैं। गीत अगर मौन की भाषा है तो साज उस भाषा की आवाज़ है। इस बात पर पियानो, गिटार, बांसुरी, सितार और कई पाश्चात्य वाद्य याद आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत गीतों का खजाना दिखाई दे रहा है। आपने कौन सा वाद्य और गीतों की मोती चुन लिए, अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी कुछ गीत आपने लिखे हैं तो सुनिएगा, बताइएगा क्या गीत आपके हमारे गीतों से मिल रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो के साथ साथ शायद हारमोनियम भी आज के गीतों में है। तो वैसे तो हमने कहा ना कि पूरे गीत में कई वाद्य यंत्र बजते हैं, लेकिन फिल्मांकन करते समय पर्दे पर जब हम देखते हैं तो नायक या नायिका उस पियानो के पास बैठे हुए बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उन गानों को आज हमने चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इट्स पियानो, सो मैनी सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन पियानो इन हिंदी सिनेमाज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में जहां नायक नायिकाएं हाथ में कोई वाद्य यंत्र लिए गाते थिरकते नजर आते हैं, लेकिन पियानो की धुन पर सजी महफिल में गाती नायिका या नायक का गाना खुशियों में डूबा या उदास लम्हों को संजोए हुए है। दिल की भड़ास निकालते गीतों का क्या कहना, जहां तालियां तो बज रही है लेकिन सामने बैठी माशूका विलेन के साथ ठिठोली करती उसे जला रही है और आशिक को बाहर चले जाने को मजबूर भी कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो में आज सिर्फ एक वाद्य यंत्र को नहीं समझा जाए बल्कि भावनाओं का अनुवादक रहा है ये। जब नायक या दिल टूटा हो, जब प्रेम अधूरा रह गया हो, जब यादें बेचैन कर रही हो या जब अपनी तन्हाई से बातें कर रहा हो कोई, तब अक्सर उसे पियानो पर गाना गाते दिखाया जाता है। पियानो की मधुर और गहरी धुनें मन के दर्द को शब्दों से भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। आपने एक गीत का जिक्र भी किया है, शायद वो गीत आप सुन भी लें इस कार्यक्रम में, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। आगे एक श्रोता का कहना है कि आज का सुरीला सफर वास्तव में सुरीला होने वाला है, क्योंकि इबारत पढ़कर मुझे लगा कि आज वॉयलिन की बात होने वाली है। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम भी अपने आप को संगीतकार समझते थे और इसी धुन में वॉयलिन की क्लास भी लगा ली, पर कुछ खास नहीं कर पाए। बहुत वर्षों पश्चात बेटे को भी वॉयलिन की क्लास लगवाई और उसने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। चार परीक्षाएं पास करके काफ़ी कुछ बजाया है, लेकिन आम तौर पर जैसा होता है हम मध्यम वर्गीय परिवारों में कि नौकरी को वरीयता दी जाती

ये समय अभाव के कारण वो भी इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर चाहे LDC UDC बैंक में काम कर ले या बाकी दूसरी पोस्टों पर चला जाए, लेकिन एक साज को लेकर वो उसे अपना शौक नहीं बनाए या उस पर अपना कैरियर नहीं बनाए, है ना। इस तरह की सोच में अक्सर बहुत सारे कलाकार छूट जाते हैं बहुत पीछे। अगला गीत लेते हैं, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। जी हाँ, जॉय मुखर्जी और आशा पारिक की जोड़ी, देखिए कैसे बजता है ये वाद्य यंत्र। जॉय मुखर्जी इसे बजा रहे हैं।

जी, तो आज हम वाद्य यंत्र के रूप में आपको पियानो की विभिन्न धुनें भी सुना रहे हैं। इस पर भी ध्यान कीजिएगा, है ना, और फरमाइएगा। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने ध्यान दिलाया है कि जो वाद्य यंत्र हैं पियानो पर, आशा पारिक बैठी हुई थी और जॉय मुखर्जी सामने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते भी हैं कि फिल्म में पियानो इस तरह का साज है जिसमें नायक या नायिका अपने दिल के जज्बात को व्यक्त करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आइए मेहरबा बैठिए जाने जा जैसे ओपी नैयर का संगीत है जिसमें लकड़ी के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, वो बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से बहुत सारे गाने हैं जहाँ पर सपेरे की बीन की आवाज़ है। गीत तो बहुत सारे हैं जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, वायलिन, ढोलक, तबला आदि का प्रयोग किया जाता है। मुझे तो आपकी पसंद की गीतों का इंतजार है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज लग गया है 440 वोल्ट का झटका। अरे क्यों भाई, समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि अकेले नायक नायिका जब गाते हैं तो ज़्यादातर दुख भरे गाने होते हैं या उम्मीद भरे, दोनों में गिटार या पियानो का उपयोग होता है, या कभी कभी बांसुरी भी। अनुमान लगाकर कुछ गाने लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, ये गाने हमारे गाने से मेल खा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कुछ गाने तो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत अलग सी थीम लेकर आप आती हैं, ज़रूर सुनेंगे नई जानकारी और मधुर गीतों के साथ आपको। जी ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए तो ये सफ़र है जहां आप हमारे साथ और मेरे साथ होते हैं, खास है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी दुल्हन बनाकर पियानो पर ये गीत गाया जा रहा है। और रफ़ी साहब की आवाज़ ने तो इस गीत पर जान ही लगा दी है, इस गीत पर जान ही लगा दिया। अच्छा, आपने जीत लिख दिया है, गलती से कुछ आपका टाइप हो गया है, और ये गीत आपको बहुत पसंद है। तो सुनते रहिए कार्यक्रम, कहीं ये गीत आपको सुनने को मिल सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे अंदाज से पियानो के साथ फैलाए गए गीतों की बौछार होगी। नायक नायिका के मनोभावों को व्यक्त करते हुए पियानो की तरंगे हैं, किसी को सुनने को मजबूर कर देती हैं, चाहे उदासी हो या खुशी का माहौल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र केवल गायक के सहायक नहीं होते गायन के, बल्कि ये संगीत के प्राण, लय और सुर के मुख्य आधार होते हैं। ये रचना को गहराई, सौंदर्य और पूर्णता प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और क्लासिक विचार आप सभी हमें लिखकर भेज रहे हैं। जी, तो हमारे दो सवाल आपने नोट कर ही लिए हैं। कुछ श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं कि पियानो से जुड़े कौन से गीत हैं जो आपको याद हैं और वो हमारी प्लेलिस्ट से हो सकता है मेल खा जाएं, या वो गीत जो आपको पसंद हो बताइए, जहां नायक या नायिका की उंगलियां पियानो पर थिरक रही हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि आपने अपने जीवन में कोई वाद्य यंत्र सीखा या आपके बच्चों ने सीखा तो उसका जिक्र कीजिए। और हम लेते हैं अगला गीत अगले सफर की ओर। रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, महेंद्र कपूर की आवाज, और फिल्म का नाम हमराज। यहाँ पर सुनील दत्त साहब बैठे हैं वाद्य यंत्र के पास और उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

मुझे लगता है कि आज पियानो पर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों की यानी हमारे साथियों की उंगलियां भी थिरक रही होंगी। क्यों थिरक रही है ना, पियानो की तरह। हाँ, पियानो पे मेरा मतलब है, क्योंकि हर गीत के साथ हम आपको एक पियानो की धुन भी अलग से सुनवा रहे हैं। और आज का ये सफर बहुत ही क्लासिक हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मुझे बताइएगा। बाकी आज जो हमने दो सवाल आपसे पूछे हैं, हमारे श्रोता फटाफट हमें जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी लड़की थी दिलवाले का और मेरी जंग जीत जाएंगे हम, इसमें पियानो का इस्तेमाल हुआ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म अनुपमा का धीरे धीरे मचल और ब्रह्मचारी का दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, क्या बात है। तो हो सकता है आपकी पसंद हमारे पसंद से मेल खाती हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राम और श्याम का और आदमी और ब्रह्मचारी फिल्म के गीत जो हैं पियानो से जुड़े हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी संगीत प्रेमी श्रोता बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक नायाब म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले नायाब कलाकार हुए, जिन्होंने हमें शानदार गीतों का खजाना दिया है। सोचो अगर ये सारे म्यूजिक वाद्य अच्छी तरह से बजाए न जाएं तो गायक कलाकार की कितनी भी अच्छी आवाज़ क्यों न हो, अच्छा गीत नहीं बन सकता था। इसलिए सभी बजाने वाले साजिंदों को हम नमन करते हैं। बिल्कुल सैल्यूट देना चाहिए हमें उन सभी संगीतकारों को, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे 1960 से 1995 तक का संगीत बहुत ही पसंद है। और एक श्रोता ने तो पियानो के प्रकार लिखा है कि अपराइट पियानो, इसका भजन 175 वजन, इसका 175 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक होता है। अच्छा, क्या ग्रैंड पियानो का 300 से 600 किलोग्राम तक होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं

पियानो पर फिल्म वंदना का गाना आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये गाना आज के सुरीले सफर में होना चाहिए। और वहीं एक श्रोता कटी पतंग का गीत बताते हैं और वहीं लिखते हैं प्यार दीवाना होता है गाने में पियानो का इस्तेमाल हुआ है। एक श्रोता लिखते हैं कि कैसी हसीन आज बहारों की रात है फिल्म आदमी का गीत है। और वहीं मधुबन खुशबू देता है दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर धीरे धीरे मचल प्यार दीवाना होता है मैंने तेरे लिए ही ख्वाब हो तुम। बहुत सारे गीतों को हमारे श्रोता ने लिखा है और आपकी पसंद हमारी पसंद से मेल खा रही है हुजूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं धीरे धीरे मचल ख्वाब हो तुम दिल ने प्यार किया एक बेवफा से चले थे साथ मिलके आपके हसीन रुख पे बहुत सारे ऐसे गीत हैं। और वहीं एक श्रोता ने फिल्म धर्म कर्म का गीत एक दिन बिक जाएगा को पसंद किया है। एक श्रोता लिखता है कि संगम का गाना दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा ये भी गाना उसी से जुड़ा है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तबला सितार हारमोनियम और एकॉर्डियन पसंद है स्कूल के दिनों में 3 महीने हारमोनियम सीखा था पर ये छूट गया अब कुछ साल पहले हारमोनियम खरीदा है और समय समय पर बजाती भी रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी वाद्य यंत्रों को लेकर इतने इतने संवेदनशील हैं इतनी मार्मिकता आपके भीतर है और इन यंत्रों के बारे में आप भी बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते हैं। आइए ऐसा ही एक और गीत सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ आवाज मोहम्मद रफी साहब की और फिल्म का नाम दो बदन।

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज तक कोई भी वाद्य यंत्र नहीं सीखा, मुझे बहुत अफसोस है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पर सुरीला सफर, जिंदगी गुजर रही है बेफिक्र, मजा आ रहा है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दो बदन का गीत मनोज कुमार पियानो बजाते हुए मोहब्बत हो गई जिनको, वो दीवाने कहाँ जाए। रफी साहब की आवाज में दर्द भरा गीत, शकील बदायूनी की कलम से और रवि का मध्यम संगीत बड़ा कर्णप्रिय लगता है। हमें पसंद है ये गीत, बजना चाहिए। हमें तो साज बजाना नहीं आता, हाँ हमारा लड़का ढोल बजाता है, जो जगह जगह भजन संध्या, अन्य कीर्तन और स्थानीय कार्यक्रमों में जाता है। अच्छी बात है ना। वहीं एक श्रोता ने पियानो वादक जो है, मशहूर जैज पियानो वादक कीथ जैरेट के बात लिखी है। 1975 का उन्हें कोलोन कॉन्सर्ट की कहानी के बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी है। इसी फिलहाल हम यहाँ नहीं ले पा रहे क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत कम है, लेकिन शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, जिंदगी इत्तेफाक है और आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना, आपके हसीन रुख पे गुजरा जमाना, ये बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई साज बजाना नहीं सीखा, लेकिन बचपन से विविध भारती को रेडियो पर सुनते सुनते आज ये दिन आ गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत आपने लिखे हैं, चेहरे पे खुशी छा जाती है, दोस्त दोस्त ना रहा, धीरे धीरे मचल और पत्थर के सनम, और इसके अलावा तू कहे अगर अंदाज का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बांसुरी, माउथ ऑर्गन और गिटार बजाना सीखा, काफी दिनों तक अपने विद्यालय और महाविद्यालय में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने कैसियो का कीबोर्ड, जो उस समय बहुत शुरू ही हुआ था, नेपाल से लाकर दिया। तब से मैं कीबोर्ड बजाता हूँ और आज मेरे पास यामाहा का कीबोर्ड है जो मैं अमेरिका से लेकर आया था। बहुत अच्छी बात है कि आप वाद्य यंत्रों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। आइए, हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में भी ये गाना है जो कहते हैं कि भाई फिल्म संगम का गीत सुनाइए मुकेश की आवाज़ में, दोस्त दोस्त ना रहा। तो चलिए सुना देते हैं आप सबकी पसंद पर, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। राज कपूर साहब बैठे हैं वहाँ इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए। सामने कौन है? राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला, है ना।
1: के हसीन रुख

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे सूरत में रोज मेरी नामक एक रेस्टोरेंट के वेटिंग एरिया की फ्लोरिंग पियानो थीम पर बनाई गई है। कांच के व्हाइट और ब्लैक पट्टे पर चलने से अलग अलग लाइटिंग के साथ म्यूजिक बजता है, बहुत ही रोमांचकारी नज़ारा होता है। ये वीडियो नहीं अपलोड होता वरना मैं दिखाता, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सरोद सीखना चाहता था पर हसरत ही रह गई, हालांकि छोटे भाई ने सितार सीखा है। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना जानता हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे खैर गानों का इन्होंने जिक्र किया है और एक श्रोता ने कहा है कि मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ और तबला भी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमने वायलिन सीखा है 4 साल तक पर अब हम बहुत कम बजाते हैं, अब थोड़ा भूलने भी लगे हैं। अरे भूलिए मत, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। और अब हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब फिल्म ब्रह्मचारी के लिए और मोहम्मद रफ़ी और लता साथियों की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी की रचना है

जी हाँ, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है और जिंदगी का ये सुरीला सफर यूं ही कट जाएगा हंसते हंसते। इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद इरफान की आवाज़ में फिल्म विलन से।

मिथुन का संगीत उन्हीं के लिखे बोल मोहम्मद इरफान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म विलन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है नंदिनी श्रीकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है क्वीन।

0: अमित त्रिवेदी का संगीत अन्विता दत्त के लिखे बोल नन्ही श्रीकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म क्वीन से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
0: वहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में कल एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा अचानक ढह गया था, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को समय पर आर्थिक संबल प्रदान करना है। श्री यादव ने कहा कि सरकार की इस पारदर्शी डिजिटल हस्तांतरण प्रक्रिया से हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के राशि मिल रही है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटों में सीधी और दतिया में सर्वाधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। छिंदवाड़ा के चांद में 75.2 मिलीमीटर भारी बारिश हुई है। वहीं जबलपुर में 56 और सीहोर में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने सीहोर और जबलपुर में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झंझावात और वज्रपात बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है, जबकि सीधी जिले में कुछ स्थानों पर लू का भी प्रभाव रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक माह के भीतर 8 बाघों की मौत के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आगर मालवा में कल आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने एक साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा। धार जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डिंडौरी जिले में वर्ष 2026 के खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय रहते आवश्यक कृषि उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़

0: संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस।

0: झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
1: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
2: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
2: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार

0: संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति पति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की

0: अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये स्वर है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे। रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है। जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नाते।

रास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। जी वास्ता है आपका।

कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज़ एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। फिल्म का नाम है अपना घर।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें

0: पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर। और
1: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजा किरकिरा कर देती है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
0: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियाँ भर जाएं, तालाब, झरने और कलकल बहने लगे, मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस
1: जी।
0: तो ये वैसे हमें रोज़ इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं, नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियाँ पकड़ने जाते हैं
1: जी,
0: तो उनकी उनकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम, मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं, तो पहली शर्त यह है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम
1: वैसे भी जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहाँ नदी, झील, झरने ऐसी चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहाँ आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके। और बहुत ही उनकी कठिन ज़िंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के ख़ास दिन जो है वो हम मनाते हैं।
0: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर जहाँ पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं, कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, न कि आपके धन की धन। तो ये ध्यान रखें, अक्सर किसी जगह पर जब जहाँ पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई, तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत ज़रूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
1: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव हैं हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले ज़रूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी, कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा
0: और बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के दल बना के जाना वो एक अलग अनुभव होता है क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है, लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है। भाई दफ्तरों से भी जब लोग किसी की शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसासात को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और आज होगी कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया, और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई, और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहाँ के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी, और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहाँ वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया, और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी, और ख़ास तौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियाँ थीं उनके लिए गंभीर

0: गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज़ से। महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की ज़रूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गईं, लेकिन वो अडिग रहीं और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रहीं।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज़्यादा स्वच्छता इकाइयाँ बनवाईं, जिससे कुछ गाँव खुले में मुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसा आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे, जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुँचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए, और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज़्यादा थीं कम हुई, और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को। और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए, और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की ज़रूरत नहीं थी।
0: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थीं, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गाँवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गाँवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियाँ, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
1: बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी, और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
0: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
1: 2022 बिल्कुल सही कहा आपने, और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
0: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया।

0: और रमीला बेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज़्यादा शौचालय वहाँ पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। इस ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही हैं, फलानी चाची आ रही हैं, फलानी जगह की
1: भाभी वाला आया मेरे द्वारे ही होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊ जी।
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही है, देखिए ना राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फ़ोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मज़ा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊ जी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा,
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए, वही दायरा उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है

0: कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता, तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है कि पढ़ाई पे
1: जी
0: विघ्न आता, तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में
1: अगर
0: शादी है
1: कोई
0: तो।
1: बहुत ज़रूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़िद करके बच्चों को ज़रूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहाँ उनके सहकर्मी हैं वो।
0: अच्छा, अब ज़रा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे
1: जी
0: में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्यौहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताज़ा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं ज़ोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक बरामदे तक गूंजते हैं,
1: बिल्कुल, बहुत
0: उसकी
1: सारी
0: बात अलग
1: छेड़छाड़
0: होती है।
1: होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
0: बड़ा हो
1: बड़े हो
0: गया,
1: गए हो।
0: बड़ा हो गया हमारा बेटा,
1: जी
0: बड़ी हो गई हमारी बिटिया, तो ये सब होता है। और समय का अंतराल कई बार कुछ चीज़ों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताज़ा हो
1: कई बार
0: जाती
1: कुछ
0: हैं।
1: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
0: ज़्यादा अमीर हो
1: छेड़छाड़।
0: गई हो, ये भी
1: हाँ
0: होता है। अब ज़्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक
1: जी
0: गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली, और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
5: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोवल, और फिर सब जगह सब

0: एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था। हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे। मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई। बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर। कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज़्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज़्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
0: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं, उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना। बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत ख़राब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। शादी के बहाने मिल तो लेते, लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादी में पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
1: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान हैं। दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए। ठीक है, उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होता शामिल होते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है। बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहाँ हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहाँ पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे, और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई, और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू न दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
0: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहाँ कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
1: है। पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियाँ करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्म रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
0: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है,
1: अमूमन ऐसा होता है।
0: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले।
1: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है, सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मज़ा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताज़ा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहाँ पर अपनापन दिखाई देता है, हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने

0: का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल
1: क्या बात है
0: रिश्तों
1: भाई।
0: को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोह में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरा चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी ज़माना है।
0: जी,
1: अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुनें। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी अभी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी
0: जी
1: लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं।
0: जी
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मज़ेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मज़े किए, डांस किया, बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
0: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफ़ी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहाँ जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से, इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। ख़ासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज़्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाज़ार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
0: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना लें, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूँ। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पेय, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, न ही डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूँ सब, सब कुछ, सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आज़ाद हूँ। अब मैं अपने वश में हूँ। हाँ, अब मैं अपने वश में हूँ, किसी और के नहीं।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम युवाणी।

साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, और स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो मित्र साक्षी पाठक का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कलम ने बदली किस्मत, शब्दों ने दिए अधिकार, संविधान ने दिया हमें समानता का यह उपहार। यह महज एक पुस्तक नहीं, राष्ट्र की है यह जान, जिसकी छाव में पलता है यह सारा हिंदुस्तान। लोकतंत्र की नींव है यह, संविधान है महान। इन्हीं पंक्तियों के साथ जुड़ते हैं साथियों आज की बात से, और आइए चर्चा करते हैं संविधान की रक्षा हर नागरिक का दायित्व पर। साथियों, भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र का प्राण और राष्ट्र का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है, क्योंकि यह देश के सर्वोच्च कानून का दर्जा रखता है। यह न केवल हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, बल्कि देश में कानून का शासन, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत बनाए रखता है। साथियों, भारतीय संविधान को लिखने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरा हुआ था। यहाँ 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा द्वारा इसी दिन अपना लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया था। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज देश को ऐसे नागरिकों की ज़रूरत है जो सिर्फ ना मांगे बल्कि कर्तव्य भी निभाए, जो सवाल पूछे लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, जो बदलाव चाहे लेकिन हिंसा से नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से। और इसीलिए श्रोताओं, हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में लोकतंत्र पर ताला लगा दिया गया था, अखबारों पर सेंसर लग गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। इसी दिन भारत में आपातकाल लागू हुआ था। यह दिन हमें यह बताता है कि लोकतंत्र कभी स्थायी नहीं होता। ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो इसकी रक्षा करे, क्योंकि अगर लोग संविधान के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो सबसे अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है। लेकिन ये अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब हम जागरूक रहेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। यह दिन हमें देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है और उन सभी लोगों के संघर्ष व बलिदान को सम्मानित करता है जिन्होंने इस दौरान अमानवीय यातनाएं झेली थी। तो श्रोताओं, यहाँ समाप्त होती है हमारी आज की बात। आइए सुनते हैं ये गीत, जो फिल्म कॉकटेल से लिया गया है। संगीत है प्रीतम का, आवाज़ है नीरज श्रीधर, कविता सीट की।

तो श्रोताओं, आइए जानते हैं पहले पिछले सप्ताह के सवालों के जवाब, जिसमें हमने पहला सवाल पूछा था, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर है डॉल्फिन। हमारा दूसरा सवाल था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर। हमारा तीसरा प्रश्न था, कौशल विकास की प्रमुख योजना कौन सी है? इसका सही उत्तर है स्किल इंडिया। हमारा चौथा सवाल था, हॉकी के जादूगर कौन है? इसका सही उत्तर है ध्यानचंद। हमारा पांचवा सवाल था, गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कौन है? इसका सही उत्तर है न्यूटन। हमारा छठवां सवाल

था, हरित गैस का प्रमुख उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा सातवां सवाल था, G20 की मेजबानी भारत ने किस वर्ष में की थी? इसका सही उत्तर है सन 2023। श्रोताओं, इनके सही जवाब हमें लिख भेजे हैं हमारे श्रोता बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, मुकाम तुमड़ी हनुमान मंदिर के पास पोस्ट उर्धन तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से सोनम नागवंशी, मयंक नागवंशी, महेश, सुनीता, प्रफुल्ल, डॉली नागवंशी, छिंदवाड़ा से कृष्ण नागवंशी, चांदपाल, ग्राम सारना से कृष्ण मालवी, जवाहर नगर दुर्ग से RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े जी ने। आइए श्रोताओं, अब जानते हैं आज के नए सात सवाल और लिखिए ये पहला सवाल, ड्रिप इरिगेशन से क्या बचता है? एक बार फिर सुनिए, ड्रिप इरिगेशन से क्या बचता है? हमारा दूसरा सवाल है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? एक बार फिर सुनिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? हमारा तीसरा सवाल है, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? हमारा चौथा सवाल है, ब्लू व्हेल किस वर्ग की सबसे बड़ी जीवित प्राणी है? ब्लू व्हेल किस वर्ग की सबसे बड़ी जीवित प्राणी है? हमारा पांचवा सवाल है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? एक बार फिर सुनिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? हमारा छठवां सवाल है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? और हमारा सातवां सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही कादियन व्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? श्रोताओं एक बार फिर सुनिए, हाल ही में चर्चा में रही कादियन व्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है?

श्रोताओं, सारे सवाल आप एक बार फिर सुन लीजिए। ड्रिप इरिगेशन से क्या बचता है? हमारा दूसरा सवाल है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? हमारा तीसरा सवाल है, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? हमारा चौथा सवाल है, ब्लू व्हेल किस वर्ग की सबसे बड़ी जीवित प्राणी है? हमारा पांचवा सवाल है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? हमारा छठवां सवाल है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? और हमारा सातवां सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही कादियन व्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के नए सात सवाल, जिनके उत्तर आप हमें भेज सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है आकाशवाणी केंद्र, कुकड़ा हिल्स, छिंदवाड़ा, क्रम सात सवाल। हमारा पिन कोड है 480001। और आप हमें व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 860226 2263 पर। और यहाँ समाप्त होता है क्रम सात सवाल।

वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543

0: 8585।
1: साथियों, ये था क्रम 7 सवाल। आइए अब करवाते हैं आपका मनोरंजन और बढ़ते हैं क्रम फिल्म संगीत की ओर, जिसमें पहला नगमा सुनवाते हैं आपको फिल्म बागी से। आवाज़ है मीत ब्रोज मोनाली ठाकुर की और संगीत है मीत ब्रदर्स का।

0: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
2: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
3: श्रोताओं, थ्री इडियट्स फिल्म

श्रोताओं, इसी गाने के साथ चलिए चलते हैं अब इतिहास की ओर। सन 1974 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और आज ही के दिन 1993 में किम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये तो था क्रम आज का इतिहास। आइए वक्त होने से पहले जानते हैं कल के आकर्षण। कल होगी आज की बात नशे से दूर स्वस्थ जीवन की ओर, होगा क्रम खेल जगत, फिल्म संगीत, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और होगी अमृतवाणी। तो श्रोताओं, अब जान लीजिए आज की अमृतवाणी। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए आपकी मित्र साक्षी पाठक को। स्वीकार कीजिए नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र का प्रसारण। शाम के 6 बजे हैं, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम संजवाती।

वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।

0: सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
2: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
3: कार्यक्रम संजीवाती अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। हम आपको सुनाते हैं माया गोविंद की रचना, आवाज है आशा भोसले की।

श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज शाम 7:20 से लेकर रात्रि 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ मौसम में बुआई और फसल प्रबंधन। हमारे बीच होंगी डॉक्टर शिखा शर्मा, सहायक प्राध्यापक कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव। किसान भाई बहन हमारे फ़ोन नंबर 8989116346 पर कॉल कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8989116346। तो किसान भाइयों, सुनना ना भूलिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी आज शाम 7:20 पर।

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन कर च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। अंतिम तिथि याद रखिएगा 30 जून 2026। संजीवाती की अंतिम रचना हम आपको सुनाते हैं रसिक पूरन की आवाज में।

इसी के साथ कार्यक्रम संजीवाती यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच का सीधा प्रसारण।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज के शेष और कल दिन भर के कार्यक्रमों का लिखा जोखा। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। आज आठवीं कड़ी सुनिएगा। इंद्रधनुष में इनसे मिले कार्यक्रम में फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रात 8 बजे हवा महल में झलकी लो कर लो दर्शन। लेखन आतिश का, निर्देशन हर्षवर्धन गवई का। आज मदन मोहन संगीतकार की याद का दिन है और उन पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनिए छाया की। 10:30 पर ढलती जाए रात। कल दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता दें। सुबह 6:05 पर वंदन वार, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, वायलिन का विहंगम संसार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी कल सुबह और शाम 6:45 पर। कलाकार हैं वायलिन वादक SL

भंडारा। बोली बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7 बजे 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 34वीं कड़ी। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित होगा संगीतकार इलियाराजा पर। ये कार्यक्रम आप रात 9:30 पर दोबारा सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश सुनिएगा। दिन में 11 बजे रंग तरंग, दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष कड़ी 34। हेलो सहेली कार्यक्रम दिन में 3 बजे होगा। इससे पहले 2:30 पर होगा सदाबहार नगमे। गीतों भरी कहानी श्रृंखला में कल सुनिएगा अरुण शेखर की कहानी उन दिनों की बात है। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे सुना जा सकता है। 5 बजे छाया गीत कार्यक्रम होगा 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7 बजे जयमाला सुनिएगा 7:05 पर गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। बजट एक कमाऊ बीवी का हवा महल के अंतर्गत रात 8 बजे ये नाटिका सुनवाई जाएगी। लेखक मनोहर वर्मा, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर चित्रलोक सुनिएगा और 9 बजे आपके लिए संगीतकार इलियाराजा पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। रात 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। ये था लिखा जोखा विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन हम विविध भारती से बोल रही हैं, आइए सुने संध्या रंजन, बेला शेंडी की आवाज। फिल्म का नाम है जोधा अकबर, गीत जावेद अख्तर का, संगीत ए आर।

0: अब सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव।

0: जी
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए, कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
0: इस राग में देखिए रिखव सा तो होता ही सब राग में, सा के बाद रिखव कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
0: वो तो स्थिर स्वर है सा और प। फिर धैवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है, रिखव और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पाधा निशा
1: जी
0: मैं आपको इस पे करके बताता हूँ।

0: इस राग की खासियत यह है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है।
1: जी जी।
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफ़ी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं, और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद आमिर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है पंडित जी। अहिर भैरव में ये खूबसूरत बंदी सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन्ना दा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई,
1: वो ऑल टाइम ग्रेट गीत है वो।
0: जी जी।
1: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी के पीसेज हैं,
0: जी हाँ,
1: वो बहुत सुनने काबिल हैं।
0: बजाइए, सुनते हैं
1: जी।

0: मन्ना डे के स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है, इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
6: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी, और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
7: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से

0: तक बुझा मुक्त गीत गया एक बरस गया एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 203 करोड़ रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण कर सकेंगे। और प्रदेश के 15 जिलों में मानसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस के

0: अवसर पर देश भर में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक अत्यंत कठिन दौर था जिसने हमारे संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गईं और राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बेहद, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसा हमला फिर न हो। उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरुद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि 25 जून 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के ही दिन 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणाम स्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजन के मजबूत संबंध हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 33,92,695 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गों के खातों में 203,56,00,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं बहने, हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा,
3: नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203,56,00,000 की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
0: भोपाल के लोकभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्वविद्यालयों को युवाओं में कौशल, योग, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को अधिक अवसर देने और गरीब कल्याण की योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया। बैतूल जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने के बाद भोपाल लौटे मोहन नागर का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
4: 23 जून को अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजातीय समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजातीय समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है राष्ट्रपति जी ने, उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा काल में मृत्यु की

स्थिति में मिलने वाली छुट्टी की राशि का स्व आकलन कर सकेंगे। आदेशानुसार कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश ईएल का ही नकदीकरण लाभ मिलेगा। यदि किसी ने पहले इसका लाभ लिया है तो वो अवधि कुल 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दी जाएगी। प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में कल दस्तक दे दी है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर करने का अनुमान है। विभाग ने कल सीहोर, सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान खंडवा जिले में 24.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सीहोर जिले में इस दौरान 0.91 इंच बारिश हुई। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अब तक कुल 64.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। दतिया जिले में अब तक केवल 13.25 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। उधर पांडुर्ना जिले के ग्राम बड़ चिचोली में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने स्कूली वाहनों की नियमित और सघन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। धार जिले के धामनो क्षेत्र में परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 50 स्कूली वाहनों की जांच की। नियम विरुद्ध पाए गए 7 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 33,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम समृद्धि योजना के तहत किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई रेशम पोर्टल पर मलबरी पौधरोपण हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है। सागर जिले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संचयन के लिए फॉर्म पॉन्ड्स के निर्माण के निर्देश दिए। झाबुआ जिले के मेघनगर में संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मेघनगर और उदयगढ़ में औचक निरीक्षण कर किराना दुकानों और दुग्ध केंद्रों से खाद्य पदार्थों के 34 नमूने जांचे गए। शहडोल जिले के बुढ़ार में जनजातीय कार्य विभाग ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की गंभीर वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा को बर्खास्त कर दिया। नीमच जिले के ग्राम हनुमंत्या व्यास में शासकीय कुएं से पानी बेचने की शिकायत पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर पीएचई विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर रोक लगाई। गुना के चाचौड़ा शाखा में खाद वितरण व्यवस्था में लापरवाही और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद प्रभारी प्रबंधक को हटाकर मोन्टू बिंदल को नया प्रभार सौंपा गया है। भोपाल के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आनंद विद्या मंदिर में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत करीब 250 छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। मंदसौर में पीएचई विभाग द्वारा भानपुरा में आयोजित कार्यशाला में 44 ग्राम पंचायतों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 10 प्रकार की जांच वाली फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। हमारे किसान साथी सुने उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। चलिए जुड़ते हैं हम हमारे आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी से, और आज मैं हूँ आपके साथ सपना सोनी। तो स्वीकार कीजिए मेरी राम राम। स्टूडियो में उपस्थित है हमारे आज के मेहमान, और साथ ही स्वागत है हमारे सभी किसान भाइयों, बहनों और तमाम श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान वाणी में हमारा आज का विषय है खरीफ मौसम में बुवाई एवं फसल प्रबंधन। इस विषय पर आप अपनी जिज्ञासा या समस्या का हल जानने के लिए सीधे हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का जवाब पा सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 8989116363।

चार छः। फ़ोन नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 8989116346। या आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मैसेज करके। हमारे स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 8602226224।

0: आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्रीमती शिखा शर्मा, सहायक प्राध्यापक पौधे एवं व्याधि। राम राम शिखा जी।
1: राम राम।
0: हमारे सभी श्रोताओं की ओर से भी आपका स्वागत है हमारे आज के हेलो किसान वाणी प्रोग्राम में। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है खरीफ मौसम में बुवाई एवं फसल प्रबंधन विषय पर, तो शिखा जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खरीफ फसलों की बुवाई के पहले खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए।
1: जी, सर्वप्रथम खरीफ में बुवाई के लिए हमें अपने भूमि का चुनाव करना है। ग्रीष्म ऋतु में हमारी जो फसलें लगी हुई होती हैं उसका अगर तना जड़ हैं तो हमें उन्हें साफ करके कोशिश करें गहरी जुताई करें जिससे खेत में कीट व्याधि के कुछ कण हों तो वो नष्ट हो जावे। साथ ही हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरकता हमें पता चले और हम जो भी फसल ले रहे हैं उसमें हमें कितनी खाद देनी है उसका हमें पता चल सके।
0: बिल्कुल
1: जी, साथ ही हमें जैसे हम मक्का लगाने वाले हैं, सोयाबीन लेने वाले हैं तो कोशिश करें इन्हें रेस्ट बेड पे लगाएं क्योंकि ये बारिश की फसलें हैं।
0: हाँ।
1: तो जल भराव की स्थिति ना हो तो ये हमें ध्यान में रखना है।
0: बिल्कुल शिखा जी, मेरा अगला सवाल ये है कि खरीफ मौसम में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं।
1: जी, जैसा कि हमारा खरीफ का मौसम है, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में मुख्य रूप से मक्का सोयाबीन ली जाती है। दलहनी फसलों में हम अरहर लेते हैं, तिलहनी में हम सोयाबीन लेते हैं, मूंगफली ले सकते हैं।
0: शिखा जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं।
1: जी
0: हेलो। हेलो
2: जी मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका नाम बताइए।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए।
2: जी पूछना चाहेंगे सर से कि जैसे कि यदि हम सोयाबीन की फसल लगाएंगे तो उसमें मतलब फसल जब उगती है तो मतलब कुछ बीज खराब हो जाते हैं, फफूंद लग जाती है, तो इस किस तरह के दवा का मतलब स्प्रे करें या फिर उसमें लगाए ताकि मतलब खराब ना हो बीज हमारा।
1: जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने फसल लगा दी है उसमें फफूंद आपको दिख रही, तो इसके शुरुआत में ही हमें अपने बीजों का उपचार करना चाहिए। उसमें अगर फफूंद
2: मतलब लगाने की तैयारी मतलब बरसात हुई है ना
1: जी,
2: तो कल परसों में लगाई जाएगी, अभी लगाई नहीं है फसल।
1: हाँ, तो बिल्कुल सही टाइम पे आपने ये प्रश्न किया है। फसल को लगाने से पहले आप बीजों का उपचार करिए, उसमें फफूंद नाशी जो आती है दवाई कार्बेंडाजीम है उसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज, उसके साथ ही जो दवाई है इमिडाक्लोप्रिट हम बात करते हैं वो 5 ml प्रति किलो बीज, साथ ही कल्चर की हम बात करते हैं सोयाबीन के लिए राइजोबियम कल्चर से आप उपचारित करें, उसको थोड़ा सा छाँव में सुखाएं, तत्पश्चात ही हम अपने उसको खेत में लगाएं। इससे आपको कीट व्याधि और उसकी उपज में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही आप अपने खेत का भ्रमण करते रहें, कुछ भी आपको अगर कीट व्याधि दिखे तो उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। जी, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
0: हमें उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया। हाँ, तो शिखा जी मैंने आपसे पूछा था कि इस मौसम में अपनी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो, तो आपने बता दिया
1: जी,
0: कि
1: जी।
0: ये लगानी है। उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि बुवाई के लिए जो बीज का चयन है वो यानी हमें किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हम ये सवाल बाद में लेते हैं, पहले हम हमारे कॉलर से जुड़ लेते हैं। हेलो
3: हेलो
0: हेलो।
3: हाँ मैम नमस्कार।
0: नमस्कार सर, आपका नाम बताइए।
3: मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर गुप्ता बात कर रहा हूँ।
0: जी देवी शंकर जी, राम राम, बताइए आपका क्या सवाल है।
3: मैम मेरा ये सवाल था कि मतलब 3-4 दिन हो गए हैं बोनी को।
0: हाँ।
3: मतलब मक्का लगाया हूँ और सोयाबीन लगाया हूँ, बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मान लो कि थोड़ा सा लेट होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि हमारी मतलब दोबारा हमको बोनी ना करना पड़े, ये मैं जानना चाहता हूँ।
1: जी जी, देखिए बारिश लगभग हमारे यहाँ छिंदवाड़ा जिले में मानसून तो आ ही चुका है। अगर आपने मानसून आने के पश्चात बोनी की है तो आप निश्चित तौर पे अगर खेत में आपने नमी देखते हुए बोनी की है तो आपकी जो है आपकी फसल निकल जाएगी, उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। तो अगर खेत में पर्याप्त नमी है तो आपके दाने अंकुरित अवश्य हो जाएंगे, और साथ ही अगर आपने बीजोपचार भी लिया हुआ है तो किसी भी प्रकार का उसमें कोई प्रकोप होगा तो उससे भी आपके बीज पूर्ण रूप से बच जाएंगे, तो निश्चित ही आपके अंकुरण हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है सर इसमें।
0: हमें उम्मीद है देवी शंकर गुप्ता जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका

0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया। शिखा जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि बुवाई के लिए बीज का चयन हमें किन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए?
1: जी, सर्वप्रथम हमें बीज हमेशा प्रमाणित संस्थाओं से लेना चाहिए, जैसे
0: जी
1: NSC है, उसमें टैग देख के लेना चाहिए, उसका लॉट नंबर हमें पता होना चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव हम करें जिससे उसमें बीमारी या कीट का प्रकोप ना हो, और टैग प्रॉपरली उसमें होनी चाहिए चीज़ें, ताकि उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना है कि हमें गलत बीज का चुनाव किया है।
0: बिल्कुल
1: और हमारे जलवायु के आधार पे, हम जैसे हम छिंदवाड़ा जिले की बात कर रहे
0: हाँ
1: हैं, तो किस मौसम में कौन सी किस्म अच्छा उपज दे सकती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बीज का चुनाव करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने शिखा जी। हमारे कॉलर हमारे से जुड़ चुके हैं, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
2: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते जी, आपका नाम बताइए।
2: मैं नरेंद्र माहौरे बात कर रहा हूँ, ग्राम नारंगी से।
0: जी नरेन जी, आपका सवाल पूछिए।
2: मेरा ये सवाल है मैम कि अभी कुछ जगह बारिश हुई है, कुछ जगह बारिश नहीं हुई है, तो अभी मतलब कम ज्यादा बारिश ही कहना चाहिए कि
0: हाँ
2: नमी कम है अभी मिट्टी में,
0: जी जी
2: तो हम अभी ऐसी स्थिति में बोनी कर सकते हैं कि थोड़ा रुके?
1: जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हुआ है। जैसा कि इस बार एलिनो की हम बात कर रहे हैं कि वर्षा की संभावना इस बार कम है, लेकिन फिर भी हम जून, क्योंकि हमारा जून का आखिरी सप्ताह चल रहा है, जून से लेके 5 जुलाई तक हमें कोशिश करना है कि हमारी बोनी हो जाए। और कुछ क्षेत्रों पे बारिश हो चुकी है और संभावित बाकी के क्षेत्रों में, छिंदवाड़ा जिले के बाकी के क्षेत्रों में भी संभावना है कि बारिश हो जाएगी, तो आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है, क्योंकि आपको एक दिन भी अगर मिलता है तो आप उसमें अपनी बोनी अवश्य पूर्ण कर ली, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उपज में आपको उसका देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करें कि आप तैयारी अपनी रखें, जैसे ही अगर आपके क्षेत्र में बारिश होती है और नमी है तो आपका बीज अंकुरित हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
0: हमें उम्मीद है नरेन जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले जो है कॉलर वो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो,
2: हेलो, किसान वाणी
0: हाँ सर, आपका नाम बताइए।
2: दीदी, मैं मुकाम बमनी लाला पोस्ट परसोली से बात कर रहा हूँ दीदी। सतीश रघुवंशी,
0: हाँ जी सतीश जी, राम राम सतीश जी,
2: राम
0: आपका
2: राम दीदी,
0: सवाल
2: कैसे हैं
0: कीजिए।
2: आप?
0: बस बढ़िया है, आपका
2: जी,
0: सवाल
2: सबसे
0: कीजिए। आज
2: पहले जी
0: मैडम है हमारे साथ।
2: जी मैडम जी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार मिले।
1: जी नमस्कार।
2: दीदी, मेरा एक सवाल ये है कि अभी हम लोग ने मक्के की फसल लगाए हैं दीदी, और उसमें मतलब फसल लगने के बाद में दवाई का छिड़काव भी कर दिए हैं, तो दीदी कुछ जगह पे मक्का आ रही है और कुछ जगह पे मक्का दिख नहीं रही है, तो क्या दीदी फिर से बुआई करना चाहिए क्या दीदी, फिर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए दीदी? सही
1: आपने
2: बता
1: किस
2: दी
1: दिनांक में बोनी की है, कृपया आप बताएंगे।
2: दीदी, मैंने 4 या 5 दिन पहले किया हूँ दीदी अभी।
1: जी, तो अभी आपके हो सकता है कि अंकुरण आ जाए, और अगर
2: जी
1: अंकुरण नहीं भी आता है तो 10-12 दिन के अंतर से आप बोनी कर सकते हैं। आपकी जो किस्म आपने ली है उसको वापस से आप बुआई कर सकते हैं। जी
0: सतीश जी, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। शिखा जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि बुवाई के लिए बीज का चयन किन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाई की ज़्यादातर यही समस्या रहती
1: जी
0: है कि कई बार बुवाई कर दी है तो कहीं, जैसे अभी सतीश जी ने सवाल किया था
1: जी
0: कि बुवाई, कहीं पौधे उग रहे हैं, कहीं मक्का आ रहा है, कहीं नहीं
1: जी
0: आ रहा है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार के बीजों का चयन करना चाहिए?
1: जी हमें सर्वप्रथम प्रमाणित संस्थाओं, जैसे NSC है, सरकारी संस्थान है, सोसाइटी है,
0: हाँ जी
1: वहाँ से ही बीज को खरीदना है, और उनका लॉट नंबर दे के खरीदना है, सील पैक बंद हो, और उसके बाद हमें साथ में बीज उपचार पे भी ध्यान रखना है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: क्योंकि
1: अगर
0: बीज उपचार क्या है, उसका क्या महत्व है और उसे कैसे किया जाता है, ये भी
1: जी
0: हमारे किसान भाइयों को बताइए।
1: जी जी जैसे कि हम बात करें बीज उपचार, जिसकी हम बात करते हैं FIR, तो सर्वप्रथम इसमें हमें फफूंदी नाशक से उपचारित करना चाहिए, जैसे कि कार्बनडाजीम है, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम लेते हैं।
0: हाँ
1: उसके बाद कीटनाशी, जैसे कीट आते हैं उसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का यूज़ कर सकते हैं, 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से। और जैसे हमें दलहनी फसलें हैं, तो जैसे सोयाबीन है, तो
0: हाँ
1: हम उसमें कल्चर का उपचार कर सकते हैं। इन
0: बिल्कुल
1: तीनों से उपचारित करने के बाद हमें अपने बीज को छायेदार स्थान में सुखाना है, तत्पश्चात ही हमें उसकी बोनी करनी है। इससे यह फायदा होता है कि अगर हम फफूंदी नाशक से हमने उपचार किया है तो उसमें जो रोग है,
0: हाँ
1: क्योंकि बीजों में बाहरी परत में और अंदर की परत में फफूंद उपस्थित रहते हैं,
0: जी
1: तो उससे रोकथाम हो जाती है।

0: से भी बचाव हमें देखने को मिलता है, साथ ही जो कल्चर से हम बात कर रहे हैं उससे उपज
1: हाँ
0: में वृद्धि देखने के लिए मिलती है।
1: जी, तो शिखा जी यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
2: हाँ जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी
1: राम राम योगेश जी, आपका सवाल
2: राम राम।
1: कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
2: हम ये जानना चाहते हैं कि अभी अरहर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सही पद्धति बताएं लगाने का।
0: जी, अरहर लगाने का बिल्कुल अभी समय है सर। अरहर को आप, क्योंकि लंबे समय की फसल है, तो कोशिश करें कि
2: जी
0: अरहर को आप मेड़ में लें। आप जिसे
2: अच्छा
0: मेड़ में लगाएंगे तो आपको उसके साथ आप दूसरी फसल को भी ले सकते हैं, तो आपको इससे डबल
2: अच्छा
0: मुनाफा होगा कि एक साथ आप अपने खेत में दो फसलों को ले पा रहे हैं। क्योंकि अरहर में समय आपको
2: अच्छा
0: ज़्यादा लगता है, और जैसे अरहर की किस्म
2: जी
0: एक राजेश्वरी है, उससे काफ़ी अच्छी उपज देखने के लिए मिलती है। इसमें जो आप बीज लेंगे उसको अच्छे से उपचारित करके आप बुआई करें, साथ ही उसमें जो कीट व्याधि है उसको समय समय पर आप उसका निरीक्षण करते हुए उसमें छिड़काव कर सकते हैं, ताकि उसको आपको अच्छा उपज मिले और आप उससे मुनाफा ले पाएं। तो एक अच्छा है कि आप अरहर भी ले सकते हैं आपके खेत में अभी।
1: हमें उम्मीद है कि आपके सब प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। शिखा जी, हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ना
0: जी
1: चाहते हैं, तो हम यहाँ अपनी बात को भी विराम देते, पहले हमारे किसान भाइयों की बात को सुन लेते हैं।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार सर, आपका नाम बताइए।
2: जी मैडम, मेरा नाम है त्रिवेंद्र चंद्रवंशी, ग्राम बचिया से। जी
1: जी सर, त्रिवेंद्र जी, राम राम, बताइए आप क्या
2: राम
1: सवाल
2: राम जी।
1: करना चाहते हैं।
2: मैडम मेरा सवाल ये था कि अभी जो है किसान तो बहुत परेशान है, और जो खरपतवार अब होगी तो वो
1: हाँ
2: कितने दिनों में खरपतवार का उपयोग करना चाहिए, करना चाहिए किसानों को?
0: जी, देखिए जैसा कि हम जब बुआई करने की तैयारी करते हैं, तो जब हमारा खेत खाली रहता है तो लगभग बुआई करने के 10 दिन पहले हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो खाली खेत है उसमें हम थोड़ा पानी दे दें। पानी देने के बाद जो खरपतवार उगते हैं तो उसको हम जुताई करके उसको हम वहीं पर नष्ट कर देते हैं। इसके साथ ही बोनी के लगभग हमारा अंकुरण हो जाए उसके पहले हम जो पेंटामिथिलिन करके दवाई आती है, प्री इमर्जेंस जिसको हम बोलते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। उससे हमारी जो खरपतवार की संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है। साथ ही हम 20 से 25 दिन बाद हम डोरा, अगर आपके पास है तो डोरा से भी आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को अपने खेत में नियंत्रित करते हैं तो आपकी जो उपज है आपको अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। जी
1: हमें उम्मीद है त्रिवेंद्र जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया। शिखा जी, मैंने आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो हमारे किसान भाई हैं, सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर,
0: जी
1: इनकी उन्नत किस्में यानी कौन सी है वो बताइए, और खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक का क्या महत्व
0: जी
1: है?
0: जी जैसा कि हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में हमारे किसान भाई मुख्यतः मक्का लेते हैं,
1: हाँ
0: तो मक्का की जो हमारी विश्वविद्यालय से काफ़ी उन्नत किस्में हैं, जैसे कि JM 216 है, 218 है। सोयाबीन की हमारी किस्में JS 22-12 है, 16 है, अभी JS 23-3-9 है। साथ ही अरहर की हम राजेश्वरी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर रामतिल भी लगाते हैं, तामिया वाला जो एरिया है
1: हाँ
0: वहाँ पे,
1: हाँ
0: तो उसमें हमारे यहाँ JNS 216-11-15 है, 216-14-13 है, JNS 521 है। तो ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं जिनको किसान भाई लेके अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। शिखा जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
2: हेलो मैम, प्रणाम। मैं ग्राम जमुनिया से अरविंद पटेल बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार अरविंद जी, आपका क्या
2: नमस्कार
1: सवाल
2: मैम
1: है, पूछिए।
2: जी। मेरा ये जानकारी लेना था मैम कि खरीफ के फसल में क्या क्या सावधानियां बरतें हैं, और अभी अलिनो प्रभाव की भी संभावना है, तो इसमें हम लोग और क्या सावधानी बरतें हैं ताकि फसलों को नुकसान ना हो और अच्छा उत्पादन हो, अगर पानी की स्थिति भी बनती है
0: जी, बहुत
2: तो
0: अच्छा
2: इन विषयों पे थोड़ा सा जानकारी
0: जी
2: लेना
0: जी आपने
2: चाहूंगा।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि एलिनो मानसून इस बार हमारा कमज़ोर रहने की संभावना है, तो कोशिश करें कि हम लोग समय पे बुआई अवश्य करें। समय पे
2: जी
0: बुआई
2: मैम
0: मतलब जून में आप अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अपनी बोनी कोशिश करें कंप्लीट करें, अगर आपके खेत में नमी उपलब्ध है तो। और अगर आप अगर लेट होते हैं, इसमें भी लेट होते हैं, तो कोशिश करें आप कम अवधि वाली फसलें लें, है
2: जी
0: ना,
2: मैम जी
0: कम अवधि वाली फसलों का चुनाव करें। और जल जल

0: आप संचित करके रखने की कोशिश करें, और साथ ही हम मेड़ की व्यवस्था करें, रिजन फरो सोयाबीन मक्का में उपयोग करें, और अच्छी उन्नत किस्मों का चयन बहुत आवश्यक है क्योंकि खरीफ में कीट व्याधि और रोग की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं बारिश के कारण। तो बीजोपचार भी एक अहम पहलू है, मिट्टी परीक्षण भी अहम पहलू है।
1: जी
0: जी, तो आप इन सारी चीज़ों को अपना के निश्चित ही खरीफ में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमें
1: जरूर मैम,
0: उम्मीद है
1: अभी हम
0: कि।
1: हमारे ग्राम यमुनिया को जो है एक आत्मनिर्भर आदर्श गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं मैम,
0: जी,
1: और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, उसमें आपका और आगे मार्गदर्शन मिलता रहे मैम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: हमें उम्मीद है
1: ठीक,
2: कि
1: थैंक
2: आपको
1: यू।
2: आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने हमें फ़ोन किया। हाँ शिखा जी, आप उन्नत किस्मों के बारे में तो आपने बता दिया था, मुझे ये बताइए कि खरीफ फसलों में जो संतुलित उर्वरक है
0: जी
2: उसका क्या महत्व है?
0: जी देखिए, जैसे कि हम संतुलित आहार लेते हैं, उसी
2: हाँ
0: प्रकार से हमारी फसलों को संतुलित उर्वरक की आवश्यकता होती है।
2: बिल्कुल।
0: अगर हम अनुशंसित मात्राओं में ही खाद उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो पौधा उस हिसाब से अपनी बढ़वार करता है। अगर हम अधिक मात्रा में हम अगर उर्वरक देते हैं तो
2: हाँ
0: पौधा व्याधि और कीट के प्रति बहुत ही जल्दी संक्रमित हो जाता है।
2: बहुत अच्छा
0: जी
2: उदाहरण दिया आपने संतुलित आहार का, कि
0: जी
2: जिस प्रकार हम अपने परिवार में छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनको
0: जी
2: एक संतुलित भोजन देते, तो
0: जी
2: वैसे हमें हमारे पौधों के लिए भी वैसे ही संतुलित उर्वरक का यानी वो उपयोग करना
0: जी जी
2: चाहिए।
0: बिल्कुल
2: और ये जाएंगे कि जिससे खरपतवार नियंत्रण के जो प्रभावी उपाय हैं वो
0: जी
2: क्या है, क्योंकि अधिकतर हमारे किसान भाई इससे ही ज़्यादा
0: जी
2: परेशान
0: जी
2: रहते हैं, तो
0: जी
2: उसके लिए एक बार और कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे इनको निजात मिल सके इन
0: जी
2: समस्या से।
0: जी जैसा कि हम बताते हैं, ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो मई जून का महीना पड़ता है, तो
2: हाँ
0: कोशिश करें हम गहरी जुताई अवश्य लेवें, क्योंकि गहरी जुताई से क्या होता है कि हमारे मृदा में जो कीट या रोग के कण पाए जाते हैं या
2: हाँ
0: खरपतवार के बीज पाए जाते हैं,
2: जी
0: तो जब हम गहरी जुताई करते हैं, मिट्टी मिट्टी पलटते हैं, तो अधिक तापमान के कारण हमारे वहाँ पे बीज या खरपतवार के कण नष्ट हो जाते हैं।
2: हाँ
0: उसके पश्चात हम जब खेत की तैयारी करते हैं तो बोनी के 10 दिन पूर्व हम अपने खेत में पानी भर दें, और जब खरपतवार उगते हैं तो उसके बाद उसको फिर हम जुताई कर लें। तो अगर
2: जी
0: हमारे खेत में किसी प्रकार के भी खरपतवार हैं तो
2: हाँ
0: बोनी के पहले हम दो प्रकार से हमने नष्ट कर लिया।
2: बिल्कुल
0: इसके पश्चात हम बोनी के पश्चात और बीज के अंकुरण के पहले हम दवाई स्प्रे करते हैं, जैसे कि पेंडेमिथलीन है,
2: जी जी
0: तो हमने वहाँ पे भी कंट्रोल कर लिया।
2: हाँ
0: उसके पश्चात हम जब हमारी फसल का अंकुरण हो गया 20-25-30 दिन बाद, हम डोरा चला के भी अपने खरपतवार को कम कर सकते हैं। जी
2: बिल्कुल। और शिखा जी यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
1: हाँ हेलो
2: हेलो जी, आपका नाम बताइए।
1: जी, मैं परशुराम चंद्रवंशी बोल रहा जी,
2: जी परशुराम
1: भजिया
2: जी,
1: से,
2: राम
1: ग्राम भजिया
2: राम
1: से। जी,
2: जी,
1: जी।
2: पूछिए आपका क्या सवाल है।
1: मेरा ये सवाल था कि वह जो मक्का और जो सोयाबीन की अभी जो बोनी हो रही है और जो करना है वो कितनी नमी होना चाहिए उसमें कि बो सकते आसानी से।
0: जी, देखिए अभी जैसा कि हमारा बारिश का मौसम है, किस क्षेत्र में पानी गिरा है, किस क्षेत्र में पानी नहीं गिरा है, तो लगभग
1: जी
0: 300 से 350 mm हम जो कहते हैं आपके
1: जी बारिश
0: होना
1: जी
0: चाहिए, पानी होना चाहिए, ताकि आपके बीज को पर्याप्त नमी प्राप्त हो सके और उसमें अंकुरण आ सके। तो नमी होना बहुत ही आवश्यक है, अगर हमारा सूखा खेत होगा तो अंकुरण होने में हमें दिक्कत पड़ेगी। तो एक बारिश होना आवश्यक है ताकि पर्याप्त नमी आपके खेत में इकट्ठी हो पाए, ताकि वो अंकुरण में समस्या ना आए।
2: हमें उम्मीद है परशुराम जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया। शिखा जी मैं ये जानना चाहूँगी कि खरपतवार नियंत्रण के प्रभावी उपाय तो आपने बता दिए, जैसे कहीं किसानों की खेतों में अधिक वर्षा या जलभराव की स्थिति में फसल को वो कैसे बचा सकते
0: जी,
2: हैं?
0: जैसे कि हमारी खरीफ की फसलें हैं, हम अपने किसान भाइयों को हमेशा बताते हैं कि हमेशा हम रिज फरो या गहरी नाली बनाएं और ऊपर से
2: हाँ
0: उठा के चौड़ी,
2: जी
0: ताकि हमारी जो फसल है वो ऊंचाई पे रहे, और जो अगर अधिक बारिश में जल
2: हाँ
0: भराव होता है तो वो नालियों की सहायता से बह के बाहर निकल जाए।
2: बिल्कुल
0: क्योंकि अगर हमारा जल है वो 24 घंटे से ज़्यादा अगर खेत में भर जाता है
2: हाँ
0: तो इसके कारण हमारी जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं,
2: बिल्कुल
0: और गलने के कारण फिर पौधा खराब हो जाता
2: खराब
0: है।
2: हो जाता है
0: तो हमें हमेशा जब हम खेत तैयार करते हैं तो हमें एक जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि किसी प्रकार से जल भराव नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात हमें जो हमारा जीवाणु नष्ट करने के लिए, जैसे कि हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस छिड़काव करने के लिए बोलते हैं, जल
2: हाँ
0: निकासी के पश्चात हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करना है,
2: जी
0: जिससे हमें जड़ को मजबूती प्रदान कर सके या वहाँ से जीवाणु

0: दूर हो सके,
1: दूर हो जाए, वहां से खत्म हो जाए,
0: तो पौधा स्वस्थ हमारा बना रहे। तो जल निकासी की व्यवस्था सर्वप्रथम इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका।
1: यदि खेत में जल भर जाएगा तो हमारे जो पौधे लगे हुए हैं वो
0: खराब हो जाएंगे।
1: तो अधिकतर हम ये देखने को मिलता है कि 24 घंटे यदि बारिश हुई, जल खराब हो गया, तो उनकी पूरी फसल ही
0: खराब हो जाती है।
1: तो ये उसी के लिए हमारे किसान भाइयों ने जानना चाहा था कि यदि ऐसी कोई स्थिति रहती है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा तरीका बताया इसका। मैं आपसे और ये जानना चाहूंगी कि खरीफ फसलों में जो लगने वाले प्रमुख रोग और कीट हैं वो कौन से हैं और उन पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं।
0: जी, खरीफ, जैसा मैंने अभी बताया अपनी चर्चा में कि खरीफ मौसम में ज़्यादा कीट और व्याधि का संक्रमण रहता है, क्योंकि उन्हें मॉइस्चर, नमी बहुत मात्रा में मिल जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमने पहले ही बताया कि हमें बीजोपचार अपनाना है। अगर हम बीजोपचार करते हैं तो हमारा प्रबंधन शुरुआत में ही हो गया। उसके पश्चात हमें हमारी जो फसल 30 से 35 दिन की होती है, हम अपने खेत का नियमित तौर पर भ्रमण करते रहें। अगर हमें किन्हीं भी प्रकार के पत्तियों में धब्बे दिखाई देते हैं तो हमें हम जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव छिड़काव, तो हम कार्बेंडाजीम, जिस दवाई का सबसे मतलब कम, जिसका हम बोल सकते हैं मूल्य है या कम जहरीली है, तो कार्बेंडाजीम का हम छिड़काव कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। साथ ही कीट के लिए अगर हमारे कुछ तना छेदक मिल रहे हैं सोयाबीन में या महू है, तो उनके उपचार के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड जो एक दवाई आती है उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसा हमें निश्चित तौर पे खेत का भ्रमण करते रहना है और किन्हीं भी प्रकार के जैसे पत्ती धब्बा है, तना सड़न है, तो हमें उनको देखते हुए अपना स्प्रे देख करते रहना, छिड़काव करते रहना, ताकि हमारी जो फसल है वो कीट व्याधि से बची रहे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने शिखा जी। आपको यहाँ रुकना चाहूंगी, हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, आपका Hello? नाम बताइए।
2: जी, मेरा नाम प्रमिला गोनेकर है।
1: जी प्रमिला जी, राम राम।
2: राम राम।
1: आपका सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मेरा सवाल ये है मैडम जी कि हम ये सोयाबीन लगाते हैं तो उसमें ऊपर हमको उत्पाद कम मिलता है। तो हम ऐसा क्या करें उसमें कि उत्पाद अच्छा मिले हमको?
0: जी, सर्वप्रथम जैसे हम चर्चा ही कर रहे हैं कि हमें सफलता पानी है किसी भी फसल को लेके, तो हम उसकी तैयारी शुरुआत से ही अच्छी करनी है। आप फसल चक्र को भी अपनाएं, भूमि का चुनाव सही तरीके से करें, और ग्रीष्म ऋतु के में आप गहरी जुताई अवश्य लें, क्योंकि जब गहरी जुताई आप लेते हैं तो आपका जो भूमि है वो कीट व्याधि और खरपतवार से मुक्त हो जाता है। बीज का चुनाव करना, जैसे सोयाबीन की आप बात करें तो सोयाबीन का प्रमाणित बीज लें संस्थान से, उसमें सही से टैग लगा होना चाहिए, उसका लॉट नंबर सही होना चाहिए। उसके बाद आप बीजोपचार करें उसका, क्योंकि अगर बीज स्वस्थ रहेगा तो उससे जो पौधा बनेगा वो भी स्वस्थ रहेगा। तो आप बीजो उपचारित करते हुए उसकी बोनिंग करें, साथ ही उसमें आप खेत का भ्रमण करते रहिए, ताकि उसमें अगर कोई धब्बा आता है, कोई बीमारी या कीट लगते हैं, तो उसका समय पर जब आप छिड़काव करेंगे, और उर्वरक जिसकी हम बात करें, संतुलित उर्वरक जैसे आपका NPK है तो वो आपको देना है। साथ ही जैसे दलहनी की फसलें हैं तो दलहनी की फसलों में कल्चर की हम बात करते हैं, कल्चर जैसे राइजोबियम हो गया, तो जैसे फफूदी नाशक है, कीटनाशक है, तो हमको कल्चर से भी अपने बीजों को उपचारित करना है। उससे क्या होता है कि आपकी जो पैदावार आपको अच्छी मिलती है। और खाद जैसे कि हमें सोयाबीन में खाद एक साथ नहीं देनी, सोयाबीन में जो खाद है वो आप बराबर संतुलित मात्रा में देंगी तो आपकी जो गठाने बनती हैं, जिसको हम कहते हैं गठाने, वो जितनी ज़्यादा बनेंगी उसमें तो बहुत अच्छी उपज आपको मिल पाएगी। तो अच्छी किस्मों का चुनाव करिए, अच्छे से प्रबंधन करिए, सही समय पर छिड़काव करिए, और जल निकासी की उचित व्यवस्था रखिए, क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में जल भराव की स्थिति होती है तो आपका जल वहाँ पे बराबर से बाहर निकल जाए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सारे प्रबंधन अपनाएंगे, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन अपनाएंगे, जो सेंसिटिव अवस्थाएं हैं, जब आपको अगर बारिश नहीं होती तो उन अवस्थाओं पर दाना भरने की अवस्था में सिंचाई देना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी फसल में अधिक पैदावार देते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है।
1: बिल्कुल प्रमिला जी, यदि आप इस तरीके से अपनाएंगे तो आपको ज़रूर उत्पादन अच्छा मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। अब यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारा एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है, हम वो सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
6: और इस संदेश के बाद एक बार फिर जुड़ते हैं हम हमारे आज के कार्यक्रम हेलो किसान वाणी से, और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
7: हेलो,
6: हाँ, आपका नाम बताइए।
7: मैं संजू देशमुख बिचवा तहसील जिला छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ।
6: जी राम राम संजू जी, बताइए आपका क्या सवाल है।
7: राम राम जी, मैंने 8 दिन पहले मक्के की फसल लगाया था खेत में, अब पानी नहीं आ पा रहा है तो वो खराब हो रही है, उसके लिए कुछ
8: आपने जब खेत में बोनी की थी तो उसमें नमी कितनी थी, मतलब नमी सूखा खेत था कि नमी मौजूद थी?
7: जिस दिन फसल लगाए थे

0: दिन पहले बारिश हो चुकी थी।
1: जी, तो आप, हो सकता है कि आपका अंकुरण आ जाए, और अगर अंकुरण नहीं आता है तो आप फिर से उसी किस्म को दोबारा से बो सकते हैं नमी उपलब्ध होने के पश्चात। जी,
2: हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। शिखा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैविक या प्राकृतिक खेती में कैसे फसल का प्रबंधन किया जा सकता है।
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे
2: जी
1: हम आजकल पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं,
2: हाँ
1: हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो साथ ही हम कुछ भाग प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अवश्य दें।
2: हाँ
1: इसमें अलग अलग पहलू, जैसे जीवामृत है,
2: हाँ
1: नीमास्त्र है, तो
2: बिल्कुल
1: इन चीज़ों को अपना के भी हम कीट व्याधि से अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथ ही हम फेरोमन ट्रैप है या पीला प्रपंच है,
2: हाँ
1: इनको भी अपना के हम कहीं ना कहीं फसल का प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं
2: जी,
1: और अपने पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकते
2: अपना
1: हैं।
2: योगदान दे
1: जी
2: सकते हैं,
1: जी
2: बिल्कुल। और मैं यहाँ आपसे और अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के किसानों के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त
1: जी
2: रहेंगी?
1: जी जैसे हमारे यहाँ कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में हम ज्वार भी ले सकते हैं,
2: हाँ
1: बाजरा ले सकते हैं, तिल अगर वहाँ पे उपयुक्त आप ले सकते
2: हाँ
1: हैं, तो ये भी कुछ फसलें हैं
2: जी
1: जिनको लगा के आप अपना उपज या पैदावार ले सकते
2: ले
1: हैं।
2: सकते हैं, बिल्कुल। जहाँ यानी कि हमारे किसान परेशान रहे तो वो ये फसल वहाँ पर लगा सकते हैं। और एक अगला सवाल हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आया था कि अंतर्वर्ती जो खेती है उससे किसानों को क्या लाभ मिल
1: जी
2: सकता
1: जी
2: है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि किसान भाई बोलते हैं कि हमारी एक ही फसल लगाई थी वही
2: हाँ
1: नष्ट हो गई,
2: बिल्कुल
1: तो लेकिन अगर हम अंतर्वर्ती फसलें लेंगे तो उससे हम एक खेत में दो फसल ले रहे हैं, अगर एक फसल को नुकसान हो भी गया तो हमारी दूसरी फसल सुरक्षित है,
2: बिल्कुल,
1: तो ये अपनाकर हम अपने जो नुकसान है
2: नुकसान है
1: उसकी
2: उसकी
1: भरपाई
2: भरपाई
1: कर
2: कर
1: सकते
2: सकते
1: हैं।
2: हैं।
1: साथ ही इससे हम अपनी मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ा सकते हैं।
2: हाँ
1: उससे क्या होता है कि कई बार कुछ कीट होते हैं एक फसल पे आक्रमण करते हैं लेकिन वो दूसरी फसल पे नहीं करते हैं, तो इनसे भी हमारी फसल
2: सुरक्षित
1: सुरक्षित हो
2: रहती
1: जाती है
2: है,
1: और मिट्टी की उर्वरकता या उपजाऊ बनी
2: उपजाऊ
1: रहती है।
2: बनी रहती
1: जी
2: है,
1: जी
2: उसकी
1: जी
2: उर्वरकता भी उनकी उसकी बढ़ी रहती है। और मैं अगला प्रश्न ये पूछना चाहूँगी आपसे कि खरीफ फसलों में नमी संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं,
1: जी
2: यानी उसमें नमी भी बनी रहे और हमारी फसल को भी कोई
1: जी
2: नुकसान ना
1: जी
2: हो।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे हम मल्चिंग की बात करते हैं
2: हाँ
1: तो हम कोशिश करें कि पुआल बिछाएं या पॉलिथीन मल्च का उपयोग करें,
2: जी
1: तो इस मल्चिंग से यह फायदा होता है कि खरपतवार भी कम होते हैं,
2: हाँ
1: जल संरक्षण होता है।
2: जी
1: साथ ही जैसे बहुत सारे किसान भाइयों का प्रश्न था कि बारिश नहीं हो रही है
2: हाँ
1: क्या करें, तो इसमें कहीं थोड़ा बहुत हमें जैसे ड्रिप इरिगेशन है या
2: जी
1: स्प्रिंकल, जिनके पास थोड़ा बहुत सिंचाई का साधन
2: साधन
1: है,
2: है तो
1: तो वो
2: वो
1: इनसे भी अपनी नमी को बरकरार रख सकते हैं,
2: बिल्कुल,
1: तो बिल्कुल फसल
2: यानी वो
1: बचा
2: यहाँ
1: सकते हैं।
2: पर हमारे किसान भाई लोग कुछ घबरा गए हैं कि भाई
1: जी
2: हमने बोनी कर दिए
1: जी
2: हैं और
1: जी
2: अब उसमें अंकुरण नहीं आ रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो यानी वो इस तरीके से स्प्रिंकलर से या
1: ड्रिप
2: उसने अपने
1: से
2: ड्रिप सिंचाई से उसमें
1: नमी को
2: नमी को
1: बरकरार रख
2: बरकरार
1: सकते
2: रखें
1: हैं
2: ताकि उनकी फसल।
1: और मल्चिंग को भी अपनाएं। मल्चिंग
2: जी
1: से भी हो सकता है कि जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण कम हो जाता है तो नमी
2: हाँ
1: वहाँ पे बनी रहती है, तो
2: जी
1: इन चीज़ों को अपना के भी हम अपने खेत में नमी और फसल का जल का संरक्षण कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने शिखा जी। और जैसे मौसम आधारित जो कृषि सलाह है वो किसान उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं? वैसे तो आपने बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारी खरीफ
1: जी
2: से संबंधी लगभग लगभग सभी बता चुकी हैं,
1: जी जी
2: लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई का ये था सवाल कि मौसम आधारित जो कृषि रहती है उसके लिए हम कौन कौन सी सलाह को का फ़ायदा उठा
1: जी
2: सकते
1: जी
2: हैं।
1: देखिए, जैसे मौसम आधारित कृषि, हमारी पूरी कृषि मानसून पर निर्भर है, खरीफ की,
2: बिल्कुल
1: तो अगर हम सबसे पहला है कि हम समय पर बुआई करें, अगर
2: हाँ
1: हमने समय पर बुआई कर दी तो हमारी उपज हमें ज़्यादा मिल जाएगी। भूमि का
2: बिल्कुल
1: चुनाव हमें करना है, बीज का चुनाव करना है, जैसे हम मक्के सोयाबीन की बात कर रहे हैं तो
2: हाँ
1: इनको हमें रिज फरो बेड में ही लगाना है,
2: जी
1: गहरी नालियाँ बनानी है, जल संरक्षण भी करना है ताकि अगर हमारे पास जैसे बारिश कम हो
2: नहीं
1: रही
2: हुई
1: है
2: या कम हुई
1: तो जल
2: तो उस
1: संरक्षण को भी हमें बरकरार रखना
2: बिल्कुल
1: है, बीज उपचार को हमें महत्व देना है, मिट्टी
2: हाँ
1: जांच को अवश्य करवाना है, क्योंकि अगर आपने मिट्टी की जांच शुरुआत में ही करवा ली तो आपको पता होगा कि आपके खेत में उर्वरकता कितनी है, तो उस हिसाब से आप खाद का या उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं।
2: बिल्कुल
1: अगर ज़्यादा, क्योंकि वैसे ही खाद की बहुत दिक्कत है, और
2: हाँ
1: मिट्टी की जांच अगर आपने कर ली तो आप जितनी आवश्यकता है उतनी ही आप खाद अपने खेत को प्रदान करेंगे,
2: बिल्कुल
1: तो उससे उपज आपको अच्छी मिल पाएगी। जी
2: बिल्कुल। और अगला सवाल ये था शिखा जी कि जैसे खरीफ फसलों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं
1: जी
2: जैसे जिंक है, सल्फर है, बोरान है, इनका क्या महत्व
1: जी
2: है?
1: जैसे कि हमारा एनपीके का जितना महत्व है उसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व है। जैसे आपने सल्फर की बात की मैडम,
2: हाँ
1: जैसे हमारी तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें में अगर हम सल्फर का प्रयोग करते हैं तो हमारा तेल का परसेंटेज बढ़ जाता है।

0: सकता है।
1: हाँ
0: जिंक, अगर हमारे खेत में जिंक की कमी हो जाती है तो
1: जी
0: उतना अच्छा दानों का भरना नहीं हो पाता है, दाने हम बोल सकते हैं बराबर साइज में नहीं आ पाते हैं,
1: छोटे दाने
0: छोटे
1: रहते,
0: दाने
1: भरे हुए नहीं
0: भरे
1: रहते
0: हुए नहीं
1: पूरे।
0: रहते। बोरान में भी यही है, अगर बोरान की कमी होगी तो दानों का उतना भर नहीं पाते दाने।
1: हाँ
0: तो हमें जिंक सल्फेट का बोला जाता है कि 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर एक 2-3 साल में डालते रहना चाहिए।
1: जी
0: बोरान का भी छिड़काव हमें करना चाहिए, साथ ही आयरन फेरस सल्फेट का भी हमें छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व ही हमारे NPK के बराबर ही योगदान है उर्वरकता को बनाए रखने में।
1: बिल्कुल। एक सवाल मैं और आपसे ये जानना चाहूंगी शिखा जी, कि यदि बुवाई के बाद लगातार बारिश हो जाए
0: जी
1: तो हमारे किसान भाई क्या करेंगे?
0: जी जी अगर बुआई के पश्चात हमारे लगातार बारिश हो रही है तो जैसे हमने पहली बात की, जल निकासी की उचित व्यवस्था हमें करनी है।
1: हाँ
0: अगर हमें हमारे खेत में 24 घंटे तक पानी नहीं भरा रहना चाहिए, अदा नहीं तो हमारा जो पौधा है वो खराब हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो उसको जल को बाहर निकालना है, और जल बाहर निकलने के पश्चात हमें अपने खेत में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कार्बेंडाजीम
1: हाँ
0: का स्प्रे करना है,
1: बिल्कुल
0: ताकि जो हमारे अगर तने में कुछ असर भी हुआ है तो वो अपने आप को स्वस्थ कर लें। तो ये हमें व्यवस्था बिल्कुल बनाए रखनी है, जल निकासी की व्यवस्था रखनी ही खरीफ के मौसम में। जी
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। शिखा जी एक सवाल और जो हमारे हमारे व्हाट्सएप में हमें मिला था, कि खरीफ फसलों में जो ड्रोन तकनीक है उसका उपयोग किस प्रकार किया जा
0: जी
1: सकता
0: बहुत
1: है?
0: ही अच्छा प्रश्न आपने लिया है।
1: जी
0: ड्रोन से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि 10 मिनट में काफ़ी एकड़ एक एकड़ को
1: हाँ
0: भी वो कवर कर लेता है। तो
1: जी
0: पानी की जो छिड़काव में जो पानी लगता है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। हम बड़े एरिया में जो हमारा खेत है उसका उसको देख सकते हैं, उसका भ्रमण कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कीट व्याधि का हमें संक्रमण देखने के लिए मिल रहा है। और तो अगर हम इन चीज़ों को कम समय में कर लेंगे तो हमें निश्चित ही फायदा मिलेगा और हमारे जो फसल रहेगी वो स्वस्थ रहेगी।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी शिखा जी आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को। हेलो किसान वाणी के आज के इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय था खरीफ मौसम में बुवाई एवं फसल प्रबंधन, इस विषय पर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्रीमती शिखा शर्मा जी, सहायक प्राध्यापक पौध व्याधि, ने हमें आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी और दे रही थी। मैम आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे जवाब दिए। आकाशवाणी छिंदवाड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं।
0: धन्यवाद जी।
1: इस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन किए हैं, जिनके बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। कार्यक्रम संयोजक हैं दीपांकर तिवारी जी और अमोल शेंडे जी, तकनीकी सहयोग अनिल कुमार सिंह और DS भलावी जी, प्रस्तुति सहयोगी थे सौरभ पटेल और कार्यक्रम प्रस्तुति सपना सोनी की। इसी के साथ ही डॉक्टर शिखा जी, मैं आपसे और हमारे सभी किसान भाई और श्रोताओं से विदा लेने का वक्त हो चला है, तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से विदा लेती हूँ। सपना सोनी को इजाज़त दीजिए। राम राम, जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सीधे प्रसारण के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
2: ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
3: लगते तो वही है। एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
2: ओ जी,
3: अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
2: ओ क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
4: क्यों,
2: क्या हो गया?
3: क्या हो गया?
2: अरे यार, खबर तो पड़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
4: ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे,
2: हाँ जी।
4: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
2: ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना, मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
3: हुआ क्या?
2: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहां से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा कि पीछे से जोर से धड़ाम किया

0: आवाज आई, मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
1: अच्छा,
0: हाहाकार मच गई। मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
1: ओहो, बड़ी बुरी खबर है।
0: भला हो वाहिगुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया।
1: सचमुच जाको राखे साईया सरदार जी, मार सके ना कोई।
0: ओए जिसनू राखे रब तो उसनू चखे कौन।
2: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था?
1: लेकिन राम गोपाल जी,
2: अरे सच्चाई ये है सीताराम जी, कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
1: अच्छा,
2: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और
1: ओहो
2: बिल्डिंग बनने दी गई।
0: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
2: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? हाँ? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है।
1: तो
2: एक और बुरी खबर है,
1: वो क्या है?
2: एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
1: माय गॉड,
0: हाँ जी ये सही कह रहे हैं आप।
1: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
2: अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है, जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं, उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
1: लेकिन यही तो कहा जाता
2: अरे
1: है
2: क्या
1: ना।
2: कहा जाता है, आप सीताराम जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है। जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादें हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। है? सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?
0: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
2: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है, जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुटलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है, बताइए आप। ये जो जानवर हैं, ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
3: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
0: ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू।
3: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
1: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
3: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
2: फेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं फेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं। कहाँ है तेरा रब, बता दो कहाँ, दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
3: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
2: चलो मैं मान लेता हूं मैं नास्तिक हूं। ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है? तुमको दिख रहा
1: नहीं?
2: है?
1: नहीं
2: नहीं दिख
1: बिल्कुल
2: रहा है
1: नहीं,
2: ना?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: दो अब जवाब, है कोई जवाब?
3: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस।

0: ले रहे हैं,
1: हाँ
0: तुम भी। हाँ, क्या दिखाई देती है किसी को जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
2: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
3: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
0: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
2: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों
3: आ
2: सरदार
3: जाएंगे,
2: जी,
3: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
1: भैया मुझे तो बख्श दो,
2: क्या बात कर रहे हो,
1: मुझे
2: चलिए
1: नहीं।
2: आप भी चलिए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: ना ही आओ तो अच्छा है।
1: हाँ
0: हाँ, भगवान की भी यही इच्छा है,
1: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
0: तो आ जाना आप दोनों। हाँ, मेरे घर।
3: अच्छा जी, सत श्री अकाल।
2: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे हम।
3: ओ जी, सत श्री अकाल जी।
2: भाई भगवान दास, राम राम।
0: आइए आइए, आ गए आप। मगर ये क्या, साथ में इतनी भीड़ ले आए।
2: अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो। चलो भाई,
0: ओके
2: कारवा
0: ओके
2: चला
0: ओके
2: है।
0: ओके, ऐसा करते हैं, वहां दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग। हाँ, एक एक करके आना,
2: ठीक
0: ठीक
2: है।
0: है? अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
2: सरदार जी, आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
3: ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ। छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी, अब मैं जाऊं भीतर दर्शन करने।
0: हाँ, मगर एक शर्त है।
2: शर्त वर्त यहां पर?
0: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
2: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूं जब भी बोलता हूं।
0: जिसने पाप ना किया हो।
2: ओ हो, मैं तो पुण्य का भागी हूं, और पुण्य भी ऐसे करता हूं कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
0: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
2: हम क्यों धोखा वोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
0: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
2: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
0: किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो।
2: हम क्यों नजर डालेंगे, अब बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
0: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
2: अरे भाई, क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है या भीतर जाऊं दर्शन करने?
0: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
2: ठीक है, ये चला।
0: क्यों जी, सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन रब के।
2: दर्शन? अरे भगवान दास जी, दर्शन की बात करते हो? हाँ, हो गए हो गए हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, विराट प्रभु का स्वरूप। ओ हो, आत्मा प्रसन्न हो गई, क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
0: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
4: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं।

0: वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: शाम 4 बजे

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी, स्वरण किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT

की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए

0: आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे।

0: दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: कानपुरी का लिखा बप्पी लहरी का सुर बत किया ये जख्मी फिल्म का गाना था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया?
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूँ मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये बारिश फिल्म का गाना था। वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत उत्तम जगदीश का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बेताब फिल्म का गाना।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें ज़रूर लगा। और इसकी वजह भी हैं, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस ज़माने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है, ये उस ज़माने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूज़िक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फ़ोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूज़िक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, कि किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में एक शैम्पेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काफ़ी छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज़ से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम फिदा

वतन साथी। दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ऊंट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: और हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो? पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आँखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती हैं। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नज़र झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हों तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन आया।

0: कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
3: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
4: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
3: And together becoming a force multiplier.
2: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के